मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026 प्रातः के 5:57 और 32 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रथम प्रसारण सभा। इस सभा के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिव्या अग्रवाल का नमस्कार और सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा,
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा

0: टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये देशगान और लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण नंदिनी शरण और उनके साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: इस राम स्तुति के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। चिंतन में आज का विषय है विवेक, और इस विषय पर अपने विचार रख रहे हैं श्री विजेंद्र श्रीवास्तव। वाचन स्वर राजेंद्र कुमार का।
1: हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम भलाई बुराई, भ्रम और सच्चाई, उपयोगी अनुपयोगी, कर्तव्य और भावना, इनको अलग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि

ये कई बार आपस में इतने गुथे हुए होते हैं कि हमारी बुद्धि संशय में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा विवेक ही साथ देता है और हम इन दोनों को अलग अलग करने में सफल

0: करना नहीं, क्योंकि विवेक के सामने दो या अधिक विकल्प अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में इतने उलझे हुए होते हैं कि ये निश्चय ही नहीं हो पाता कि भला क्या है और बुरा क्या है। यद्यपि कुछ साधारण बातों में विकल्प स्पष्ट भी होते हैं। अंग्रेजी विवेक का पर्याय है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये विवेक बुद्धि के माध्यम से काम करता है। बुद्धि का काम है किसी भी बात का विश्लेषण करना, इसलिए ये सदैव अनिश्चय और निश्चय के बीच बनी रहती है। विवेक इसे निश्चयात्मक बनाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है पर उसमें विवेक की कमी है तो वो सफल नहीं हो सकता। कौन सी बात कहाँ कहना या करना है, इसका निर्णय विवेक के बिना बुद्धिमान व्यक्ति कर ही नहीं सकता। विवेक को शक्ति कहाँ से मिलती है, विवेक को कैसे बढ़ाया जाए? तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यहाँ सत्संग को व्यापक अर्थ में लेंगे। अच्छा वातावरण जो उद्यमशील बनाए, उत्साह जगाए रखे, ज्ञान विज्ञान तर्क सीखने को मिले, अच्छे संस्कार मिले, सामाजिक हित की बातें सीखने को मिले, इन सबसे विवेक, विवेचन क्षमता, नीर शीर न्याय की योग्यता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि निराशा, घरेलू कलह, ईर्षा द्वेष, क्रोध की भावना, झूठ चालाकी का वातावरण मिलता है तो विवेक कुंठित हो जाता है। भले बुरे की पहचान जाती रहती है, बुद्धि पर पर्दा सा पड़ा रहता है। बड़े असमंजस की स्थिति में विवेक की सहायता से किस प्रकार सही निर्णय हो सकता है, इसका उदाहरण चित्रकूट की सभा में देखा जा सकता है, जिसमें भरत पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि राम के प्रति प्रेम और रघुकुल रीति से पिता की आज्ञा, इन दोनों में से किसे चुने, क्योंकि संपूर्ण सभा भरत की ओर ही देख रही थी। तब निरख विवेक विलोच नहीं, शिथिल स्नेह समाज। ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर विवेक का अर्थ रामानुजाचार्य ने भोजन का विवेक किया है, जो स्वच्छता व स्पर्श दोष से शुरू होकर ईमानदारी की कमाई से प्राप्त अन्न तक जाता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से ही शुद्ध मन बनेगा। पर शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में नित्य अर्थात आत्मा परमात्मा और अनित्य अर्थात संसार, इन दोनों के बीच अंतर कर पाने की योग्यता, ऐसा अर्थ विवेक का किया है। तुलसी कहते हैं, बिनु विवेक संसार घोर नदी पार न पावे कोई। विवेक इस प्रकार सांसारिक सुख और सफलता तथा आत्मिक उन्नति दोनों में समान उपयोगी है। इसलिए सत साहित्य सत संगति से हम विवेकशील बने।
1: चिंतन में अभी आपने सुने विवेक, इस विषय पर श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी के विचार। वाचन स्वर था राजेंद्र कुमार का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। नीचे सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। जो ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया

कि एक वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय के रूप में करें। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी के दूध में पौष्टिक गुण होने के साथ साथ लौह तत्व की अधिकता, प्रोटीन और वसा की मात्रा लगभग माँ के दूध के बराबर पाई जाती है। बकरी के दूध में वसा के कण छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे यह दूध गाय भैंस की तुलना में शीघ्र पाचनशील होता है। जो व्यक्ति दमा और खांसी रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए बकरी का दूध दवा का कार्य करता है। बकरी गाय और भैंस की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, इसलिए आवास व्यवस्था बनाने में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और कम पूंजी में व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। बकरियों की यदि सही तरह देखभाल की जाए और उन्हें संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियां शीघ्र ही आय का स्रोत बन जाती हैं। बकरियों की प्रमुख रूप से दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जमुनापारी और बरबरी। जमुनापारी बकरियां अक्सर सफ़ेद रंग के साथ साथ काले और कत्थई धब्बों के

0: रूप में पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा और कान बड़े लटके हुए होते हैं। पिछले पुट्ठों पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। ये बकरियां दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका औसत दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। बर्बरी बकरियां प्रमुख रूप से दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं। बकरी खरीदते समय बकरी की उम्र लगभग 3 वर्ष हो, माथा लंबा मध्यम चौड़ाई वाला हो और माथे पर घने बाल न हो, आंखें बड़ी और चमकीली हों। जिस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं सुविधा अनुसार नस्लों का चयन करना चाहिए और स्थिति के अनुसार जितनी बकरियों को सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें शुरुआत कम बकरियों से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बकरियों के लिए आवास व्यवस्था इस प्रकार बनानी चाहिए कि बकरियों को सर्दी गर्मी वर्षा और जंगली जानवरों से बचाव किया जा सके। साथ ही आवास ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी न ठहरता हो, क्योंकि बकरियां कीचड़ और गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करती। आवास ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर स्वस्थ हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे। बकरियों को स्थान का अभाव महसूस न हो। जहां पर बकरियों को रखते हैं वहां पर लगातार साफ सफाई करते रहें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें जिससे किलनियां, मक्खी मच्छर पैदा न होने पाए। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से बकरियों का बचाव करें। संतुलित और सुपाच्य आहार दें। स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं। अंतः परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर दवाएं पिलाते रहना चाहिए। बकरियों में रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यदि बकरियों की चाल में परिवर्तन दिखाई दे, भूख कम हो जाए, नथुने और थूथन सूखने लगे, नाड़ी की धड़कन कम या अधिक हो जाए, श्वसन गति में अंतर आ जाए, गोबर और मूत्र में परिवर्तन दिखाई दे तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं भी और किसी भी मौसम में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। अगर बकरियों की सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आर्थिक आय का एक स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। दर्पण कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ संदेश।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: श्रोताओं, दर्पण कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये सूचना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गत दिवस अपने एडमिशन पोर्टल पर UGCSAS राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने अकाउंट में लॉगिन करके अलॉट किए गए कॉलेज और प्रोग्राम की जानकारी देख सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को तय समय सीमा के अंदर अपनी सीट स्वीकार करनी होगी। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिड एंट्री के लिए विकल्प अगस्त में मिलेगा। और श्रोताओं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के अनुसार जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट की गई है वे अपने एडमिशन के ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद अलॉट किए गए कॉलेज 27 जुलाई तक उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, यानी कि आज डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का अंतिम दिन है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना एडमिशन कन्फर्म करने के लिए 28 जुलाई तक एडमिशन फीस जमा करनी होगी। तो जल्दी से जिन भी लोगों के नाम इस लिस्ट में आ गए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें और अपनी सीट को स्वीकार करें, उस सीट को जल्दी से बुक कर लें।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानां आधारेण भावी परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानां अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन

0: रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गत शनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य संपूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ता।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
0: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला माल

0: आरती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ। काव्य पाठ में आज के कवि होंगे श्री राम प्रकाश अनुरागी। फिल्म संगीत आप हमारे स्टूडियो से सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज के कलाकार होंगी हरजिंदर सिंह तेजा। इनसे सुनेंगे इनके गाए कुछ भजन। गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:00 से। 9:30 पर आज आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे वीना जोशी का गायन और इनसे आप सुनेंगे इनका गाया राग भूपाल तोड़ी। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे प्रातः 10:00 से, जिसका प्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे। व्हाट्सएप फरमाइश, आपके ही पसंदीदा गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 10:05 से। श्रोताओं, प्रातः 11:00 से कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा, जिसमें आप 11:00 आप सुनेंगे फ़ोन करें गीत सुनें कार्यक्रम। फिल्म संगीत मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00 से। 12:30 पर सुनेंगे आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। स्वास्थ्य दर्पण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा, भोपाल केंद्र की प्रस्तुति ही होगा लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम, जो आप सुनेंगे क्रमशः 1:30 पर और 1:45 पर। फिल्म संगीत मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर 2:00 से। 2:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद एक बार फिर से आप ले सकते हैं। श्रोताओं, मध्य प्रदेश केंद्र से कार्यक्रमों का प्रसारण आज की सभा में दोपहर 3:00 तक किया जाएगा।

श्रोताओं, शाम की सभा का प्रसारण आरंभ होगा शाम 5 बजे से। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के समय 5:02 से। 5:23 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम फिल्म संगीत 5:33 पर। शाम 6 बजे मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुनेंगे एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग, और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम की सभा में 6:30 पर। आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार 7:10 पर आप सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:20 पर ग्वालियर केंद्र से आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज आप सुन सकेंगे लोक माधुरी का कार्यक्रम, बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, आप इसका आनंद आप ले सकेंगे हमारे कार्यक्रम चौपाल से। संसद समीक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:00 से, और 8:30 पर मध्य प्रदेश केंद्र से ही आप सुनेंगे फिल्म संगीत, आपकी फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे 9:30 पर। और संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाहियों का प्रसारण आप सुनेंगे 10:30 पर। रात्रि 10 बजे से संसद का मानसून सत्र का कार्यक्रम आप सुनेंगे, और 10:30 पर आप सुनेंगे राग रंजनी कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारी आज की इस सभा और शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों।

श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय कार्यबल, नंदन नीलकणी करेंगे नेतृत्व। लोकसभा में आज पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला संशोधन विधेयक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी को दी 109 करोड़ रुपए की विकास सौगात, खुलेंगे नए महाविद्यालय। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर काम करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है।

0: हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए। कार्यबल में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी सहित कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीधी में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, जबकि नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जुलाई से देश भर में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के तालाब, कुएं और बावड़ियों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर लौटे युवाओं से संवाद किया। ग्वालियर जिले में युवा विक्रम सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं में से एक हैं। ये कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें युवाओं को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माय भारत मंच से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 54 करोड़ रुपए के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
2: अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए, और तो और राज्य ने युवाओं के काम के लिए पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाए अपने लिए।
1: उन्होंने बताया कि इस साल 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में विधि महाविद्यालय और एमबीए महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का सतत प्रवाह बताया है। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम से पहले छात्राओं के साथ मन की बात का सामूहिक श्रवण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के हर क्षेत्र से प्रेरक प्रसंग सामने लाता है। उन्होंने छात्राओं से इस कार्यक्रम को नियमित सुनने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर में इस योजना का लाभ लेकर एक महिला ने अपने छोटे व्यवसाय को सफल उद्यम में बदल दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हरीश यादव।
4: कविता राठौड़ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। योजना के तहत उन्होंने बैंक से पहले चरण में 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसे उन्होंने एक सिलाई सेंटर के साथ रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। कविता राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया
5: कि जो सहायता हमको मिली है वो सही समय में मिलने से हमारा परिवार का भरण पोषण में कर पा रही रही हूँ और आत्मनिर्भर बनी हूँ, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
4: अधिकारियों का कहना है कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेघनगर CMO LS राठौर ने आकाशवाणी को बताया कि
6: नगर पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने और उन्हें सभी चरणों का लाभ दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में एक सशक्त कदम बनकर उभर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से हरीश यादव।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दतिया उपचुनाव के तहत बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले ग्वालियर चंबल में डकैतों और अपहरण का आतंक था जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल बाघ सप्ताह के तहत रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम फिर सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई जबकि आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल इंदौर उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। भारत ने कल हरारे में तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रनों के लक्ष्य के जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे ग्लासगो में भारत के कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। करगिल विजय दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय फोटो प्रदर्शनी के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक लाइव प्रसारण किया गया। रायसेन में करगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। खंडवा में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आज स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पुलिस द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं धार में कल नशा मुक्ति जन जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। उधर कटनी में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत चौकी क्षेत्रों में हाट बाजार बस स्टैंड बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए सुनिए काव्य पाठ। काव्य पाठ में आज के कवि हैं श्री राम प्रकाश अनुरागी। सुनते हैं इनकी कुछ कविताएं।
2: सबसे पहले एक 4-5 दोहे और फिर एक गीत। तो दोहे सुने और बड़े मन से सुने। कई अहिल्याएं हुई इस युग में पाषाण, कई अहिल्याएं

इस युग में पाषाण, इसीलिए मैं खोजता हर पत्थर में प्राण, इसीलिए मैं खोजता हर पत्थर में प्राण। दुआ सुने कि नदिया जीवन रूप है, जीवन नदिया रूप, नदिया जीवन रूप है, और जीवन नदिया रूप, दोनों ही कब देखते छाया है या धूप, दोनों ही कब देखते छाया है या धूप। जो नदिया में जल बहे त्यों जीवन में वायु, जो नदिया में जल बहे त्यों जीवन में वायु, समुचित सतत प्रवाह ही है दोनों की आयु, समुचित सतत प्रवाह ही है दोनों की आयु, और दोनों ही करते रहें यात्रा बेतरतीब, सागर से नदिया मिले, मिले ब्रह्म से जीव, सागर से नदिया मिले, मिले ब्रह्म से जीव, जिसने परहित होम दी सांसें आहुतिमान, जिसने परहित होम दी सांसें आहुतिमान, उसका जीवन हो गया पावन यज्ञ समान, उसका जीवन हो गया पावन यज्ञ समान। और इसी क्रम में एक गीत, बड़ा कोमल गीत दे रहा हूं कि रंग बिरंगी इस दुनिया में, रंग बिरंगी इस दुनिया में, कुछ गोरे कुछ सांवरे, मत उलझा मत उलझा मन बावरे, मत उलझा मत उलझा मत उलझा मन बावरे, मत उलझा मत उलझा, कि यहाँ किसी को समय कहाँ जो तेरी बात सुने, कि नाहक ही तू रोए गाए नाहक शीश धुने, कि सहलाने से भर न सकेंगे, सहलाने से भर न सकेंगे अंतर मन के घाव रे, मत उलझा मत उलझा मन बाव रे, मत उलझा मत उलझा, सहलाने से भर न सकेंगे अंतर मन के घाव रे, मत उलझा मन बाव रे, मत उलझा मत उलझा। और सुने कि मत कर आस अपेक्षाओं की पूरी होने की, मत कर आस अपेक्षाओं के पूरी होने की, कर कोशिशें उपेक्षाओं को मन से धोने की, कि बचा नहीं तो और बढ़ेंगे, बचा नहीं

0: இங்கே நித்து மானசிக்கு தனாவுரி மத்து உலிஜா மத்து உலிஜா மனு பாவுரி மத்து உலிஜா பச்சா நீ தோ ஆறு பழேங்கி நித்து மானசிக்க தனாவுரி மத்து உலிஜா மத்து உலிஜா மனு பாவுரி மத்து உலிஜா ரங்கு பிரங்கி இஸ் துனியா மே அவசன் சொன்னேன் कि रोते नयन अधर मुस्काते करते मनुमानी हे रोते नयन अधर मुस्काते करते मनुमानी और सांस सांस में व्यथा पालते सांस सांस में व्यथा पालते बड़े बड़े ज्ञानी सबका जीवन एक सरीखा सबका जीवन एक सरीखा केवल भिन्न स्वभाव रे मतुलझा मनुभाव रे मतुलझा सबका जीवन एक सरीखा केवल भिन्न स्वभाव रे मतुलझा मन भाव रे मतुलझा मतु अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ कि जिसको पाने प्राण भटकते वही देवता है जिसको पाने प्राण भटकते वही देवता है भीतर बाहर भला बुरा सब वही देखता है जिसको पाने प्राण भटकते वही देवता है भीतर बाहर भला बुरा सब वही देखता है उसे समर्पित कर जीवन के उसे समर्पित कर जीवन के सारे भाव अभाव रे मतुलझा मनु भाव रे मतुलझा रंग बिरंगी इस दुनिया में कुछ गोरे कुछ सांवरे मतुलझा मन बावरी मतुलझा मतुलझा मतुलझा
1: श्री राम प्रकाश अनुरागी से अभी आप सुन रहे थे उनका काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

दीवाना फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। लेडीज कार्यक्रम में अब सुनिए मासूम फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत और संगीत दोनों ही हैं आनंद राज आनंद का।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
7: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
7: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
8: RBI कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
10: इन संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में, और इस फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रंग से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं रंग फिल्म का ये गीत।

श्रोता अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल सरो में एक गीत और हम आपको सुनवा रहे हैं, समीर का ही गीत और संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म है राजा।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
7: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
6: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की

0: पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 इन लोकसभा टुडे। Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
6: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इसमें आज आप सुन रहे हैं हरजिंदर सिंह तेजा के गाए कुछ भजन, और कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिजिंदर सिंह तेजा के गाए कुछ भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिजिंदर सिंह तेजा के गाए कुछ भजन।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: सुरमई सवेरा कार्यक्रम में श्रोताओं अभी ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, क्योंकि अभी वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीधी में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, जबकि नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को नया रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 54 करोड़ रुपए के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दतिया उपचुनाव के तहत बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रदेश की ई प्रवेश प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 जुलाई तक प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और भारत ने कल हरारे में अंतिम टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
1: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या अग्रवाल। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम लेके करने चंद बातें और सुनवाने कुछ अच्छे से गीत। दोस्तों, करना तो चाहिए गुड मॉर्निंग, लेकिन मौसम देख के गुड आफ्टरनून वाली फीलिंग आने लगी है। पता नहीं क्या हुआ है आज इस बार की बारिश को कि कितना भी बुला हो मान ही नहीं रही है, आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन अगर हम दिल से कोई चीज़ करें और दिल से कोई बात कहें तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो हम सब भी मिलकर इस मौसम को मनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ये बारिश मान जाए और ग्वालियर क्या पूरे देश की गर्मी को शांत करें। कई कई जगह बहुत सारी बारिश भी हो रही है और ये परिणाम है हम सभी के कुछ ऐसी चीज़ों का कि हम आज भी नहीं सोच रहे हैं पेड़ काटने से पहले, और पेड़ लगाते भी हैं तो उसका ध्यान नहीं रख पाते। बहुत ज़्यादा हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अब वो दिखाई नहीं दे रही है। पेड़ लगाना केवल एक सोशल स्टेटस बनता जा रहा है, लेकिन उसकी जो देखभाल है वो हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों की वजह से हो ये रहा है कि हमारा मौसम दिन पर दिन ख़राब होता चला जा रहा है। दिन पर दिन नई नई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत पहले से चली आ रही है बात, लेकिन अब हमें महसूस होने लगी है जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जिस तरह की गर्मी हमें फ़ील हो रही है, उससे लगता है कि हम खुद अब इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे बारिश को मनाने की, और ये जो गीत है ना, हमारा साथ देगा।

श्रोताओं, एक सूक्ति मैं आपको सुनाती हूँ। मैं यह बहुत गर्वोक्ति पूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो शायद, या ऐसे बच्चे को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। और ये सूक्ति सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ दोस्तों, आज है उनकी पुण्यतिथि। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि जी APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकुंडी गांव, ये गांव तमिलनाडु के रामेश्वरम ज़िले में था, वहां के एक मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन ना तो अधिक पढ़े लिखे थे और बहुत समृद्ध कहना चाहिए नहीं थे। मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे इनके पिता, और अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में इनका दीक्षा संस्कार हुआ और यहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किया था। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। श्रोताओं, ये कहते थे कि ये मेरा प्रथम चरण था, जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए ये सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण के समय था। श्रोता, 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम जी को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह यानी SLV-3 प्रक्षेपास्त्र करने का भी श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का ये सदस्य बन गए, और इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के परवान चढ़ने का श्रेय भी श्री अब्दुल कलाम जी को प्रदान किया जाता है। अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपात्रों की तकनीक को इन्होंने बनाया। 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर इन्होंने किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में जो सफलता अर्जित की है, इसका श्रेय भी श्री अब्दुल कलाम आजाद जी को ही जाता है। भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच इन्होंने प्रदान की, और

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वे 1982 में वापस निदेशक के तौर पर आए। उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय ही काफ़ी कुछ इन्हीं को है। साथ ही 1998 में पोखरण में अपने दूसरा परमाणु परीक्षण इन्होंने जब किया, उस परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में हमारा भारत शामिल हुआ। श्रोताओं, बहुमत द्वारा 18 जुलाई 2002 को कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषाओं में कविताएं भी लिखी हैं और कुछ ही समय पहले ज्ञात हुआ है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है, वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद भी किया जाता है। श्रोताओं, यूँ तो अब्दुल कलाम जी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते थे। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कह सकते हैं कि विकसित भारत का जो सपना था वो हमारे कलाम साहब ने ही देखा था और काफ़ी हद तक उन्होंने उस सपने को पूरा करने की बहुत कोशिश की है और आज ये कोशिशें हमें इस ऊंचाई तक ले गई है कि हम AI जैसी चीज़ों के सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत सारी हम तरक्कियां कर रहे हैं। बहुत सारे प्रक्षेपण हम अब भारत में ही बनाने लगे हैं। अभी ही कुछ समय पहले स्वदेशी मिसाइलों का भी विकास हमने किया है। तो ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत की नींव रखने वाले थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। श्रोता, उन्होंने कहा है कि 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण पक्षपातों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। श्रोताओं, 27 जुलाई 2015 की शाम को अब्दुल कलाम आज़ाद जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक जोरदार दिल का दौरा पड़ा। बेहोश होकर एक वहीं पर ही गिर पड़े और लगभग शाम को 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेधानी अस्पताल ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई थी। इस तरह अपना ही कर्म करते करते इन्होंने अपने जीवन को, जो कहना चाहिए कि जीवन से इन्होंने मुक्ति पाई और पूरी ज़िंदगी इन्होंने यही संदेश दिया है कि जीवन में कर्मों का बहुत अधिक महत्व है। श्रोताओं, ऐसे महान व्यक्तित्व को हम दिल से नमन करते हैं। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुक्कल्लूर का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। और सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। अपने इन्हीं विचारों के साथ उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। पूरे जीवन को उन्होंने हम सब के लिए प्रेरणादायी बनाया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा नमन और इस गीत के माध्यम से हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सेल्फी लेंगे,
3: आइडिया यही करते हैं पार्टी,
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, हमारे मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रहा है नशा मुक्ति अभियान, जिसमें इनका स्लोगन है इस अभियान का, नशे से दूरी है जरूरी। ये जो अभियान है श्रोताओं, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक के लिए आरंभ किया है। और ये जो अभियान है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है ज़रूरी और नशा मुक्त मध्य प्रदेश, ये जो है बहुत ज़रूरी अभियान है दोस्तों। आज के कलेवर में देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो नशे के आदि होते चले जा रहे हैं, और बहुत सारे बहुत आसान सा हो गया है आजकल नशे को प्राप्त कर लेना। पहले के ज़माने में शायद थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल इतने सारे संदिग्ध लोग इस क्षेत्र में उतर आए हैं कि कहना चाहिए इस युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जहां उनके लिए बहुत आसान होता है स्कूल कॉलेजेस में जाकर के उनसे दोस्ती बढ़ाना और उन्हें अपनी बातों में लेकर के नशे की लत में झोंक देना। श्रोताओं, ये जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा, उसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें है कि युवाओं और स्कूली छात्रों को नशे के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूक करना, साथ ही विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रैलियां और शपथ समारोह इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे हैं, और साथ ही नशा पीड़ितों की पहचान कर उन्हें परामर्श और उपचार केंद्र उपलब्ध कराना, ये इस अभियान का सबसे मुख्य आयोजन है। श्रोताओं, हमारे शहर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस अभियान के तहत की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, साथ ही जो बहुत सारे क्लब्स हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं, वो सब भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, हम इस चीज़ सब को समझें कि ये अभियान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। श्रोताओं, नशा जो होता है ना, वो किसी भी प्रकार का हो, अभी तो हम वैसे इस तरह के नशे की

द्रव्य पदार्थों के सेवन की बात कर रहे हैं, जिसमें यदि हम एक बार फंस जाते हैं इसके कुचक्र में तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा दिल दोनों ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि नशे से ही हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो इसमें इस कदर जकड़ जाता है कि वो सोच ही नहीं पाता कि इसके आगे है क्या। लेकिन अगर हम अपनी विल पावर को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर लें और इस मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएं कि नहीं, मुझे ये नशा छोड़ना है और किसी भी हाल में छोड़ना है, तो हम ज़रूर अपनी इस आदत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, बहुत आसान तो नहीं होता, जहाँ तक अगर मैं समझती हूँ कि नशे की लत से अपने आप को मुक्त कराना, लेकिन हम अगर हम कोशिश करें और धीरे धीरे छोड़ें, एकदम अगर हम सोचें कि हम जो भी नशा कर रहे हैं एकदम से छोड़ सके, नहीं हो सकता। कई लोगों को पुड़िया खाने की आदत होती है, कई लोगों को मादक द्रव्यों का सेवन करने की आदत होती है, कई लोगों को शराब जैसे नशे की आदत होती है, तो हम उसे एकदम ना छोड़ के कम तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम ये करते हैं कि हम पूरे दिन में बस, ठीक है बहुत ज़्यादा अगर लगता है तो हम थोड़ा बहुत से शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे करके उसे बिल्कुल शून्य पर ले आएं, तो हम इस आदत से बहुत जल्द अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। साथ ही हम उसके जो कहना चाहिए उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएँ आती हैं जो जैसे ही अगर किसी को जो नशे से पीड़ित व्यक्ति उसे अगर तलब लगती है तो वो उन दवाओं का सेवन कर सकता है। सिगरेट की लत को छुड़ाने के लिए भी कुछ इस तरह की च्युइंगम टाइप की टैबलेट्स आती हैं जो आप ले सकते हैं, और इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र पर जाकर के आप सलाह ले सकते हैं, वहाँ जाकर अपना उपचार करा सकते हैं। वहाँ प्रॉपर जो बहुत ज़्यादा नशे के आदि लोग होते हैं उनको रखा जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, तो वहाँ जाकर भी आप अपने आप को सुरक्षित अवस्था में रखते हुए अपने इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। श्रोताओं, जो नशे के आदि होते हैं वो सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों, और लेकिन अगर हम अपनी विल पावर को मजबूत करें तो डेफिनेटली इस आदत को छोड़ सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ अब वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं समेटें, आपसे विदा लें। तो नमस्कार दोस्तों, और विदा दीजिए अपनी दोस्त दिव्या को। इस कार्यक्रम में कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वीणा जोशी के गायन, और इनसे आप सुनेंगे इनका गाया राग भोपाल तोड़ी। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं विनय विंदे, हारमोनियम पर हैं अनिल दंडौतिया और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। तो सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में वीणा जोशी का गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना वीना जोशी का गायन, इनसे आपने सुना इनका गाया राग भोपाल तोड़ी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है, आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे की। कल डॉ. यादव ने निवाड़ी जिले में करीब 193 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने निवाड़ी को प्रदेश की अयोध्या बताते हुए कहा कि ओरछा में भगवान राम के राम राजा लोक का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए नवनिर्मित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। निवाड़ी दौरे के दौरान वे ओरछा भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राम राजा सरकार मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नवागत एसडीएम विनीता जैन ने क्षेत्र के सभी पटवारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री शत प्रतिशत पूरी करने, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, सीमांकन और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर जमुना भिड़े ने पिछली साप्ताहिक जनसुनवाई में प्राप्त 80 आवेदनों पर सुनवाई की। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि कब्जे से जुड़े मामलों में अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर जांच पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है। नवागत अपर कलेक्टर और अपर जिला दंडाधिकारी इकबाल मोहम्मद ने कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निवाड़ी तिगैला स्थित पुरानी मंडी परिसर के अस्थायी बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबरों की बात करें तो जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 45 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की है। जिला शिक्षा अधिकारी और उन्मेश श्रीवास्तव ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें प्राथमिक स्तर पर खेल और संगीत के 3 शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 42 शिक्षक शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रोहित शुक्ला ने लड़वारी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और झुकियाई के शासकीय हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लड़वारी विद्यालय में अवकाश प्रक्रिया में लापरवाही पर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। रोजगार के क्षेत्र में जिले के शासकीय पीजी कॉलेज में युवा संगम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 220 आवेदकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 115 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया, जबकि 2 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। नगर विकास से जुड़ी खबर में नगर परिषद अध्यक्ष नीलू केशव खटीक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी ने वार्ड क्रमांक 5 और 6 में डोर टू डोर भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नागरिकों से जल आपूर्ति, पानी के प्रेशर और स्वच्छता की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से दस्तक अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य दल घर घर पहुंचकर 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में संभावित हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी संवेदनशील जल स्रोतों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नदियों, तालाबों, बांधों और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ चेतावनी बोर्ड, फेंसिंग और बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में नशे से दूरी है दूरी 2.2 जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों ने सहभागिता की। अधिकारियों को कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण, बल्क वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी तय करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में उद्योग, सेवा, कृषि आधारित परियोजना, एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना के तहत पात्र किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आप ही के फरमाइश के व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए कुछ गीत। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दिव्या अग्रवाल।

0: श्रोताओं सबसे पहले फरमाइश ले रहे हैं हम अपने इन श्रोताओं की। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया ज़िला गाज़ीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। लछनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति, कुंती साहू। गांव कैरो ज़िला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाश टेप, अनहद और पोत्रा गुर शबद। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर। इन सब की पसंद पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का गीत। मजरूर सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एसटी बर्मन ने और आवाज़ है मनहर उदास और लता मंगेशकर की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए अब सुनिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चिंतरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका समस्त परिवार। ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव। मुरार ग्वालियर से गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजिए। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने, इन सभी ने फरमाइश की है ईश्वर फिल्म के गीत की। गीत को लिखा है अनजान ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ें हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की। सुनते हैं ये गीत।
1: चार सप्तक

0: जी, तुम्हारे आने से तो सब कुछ सुरीला हो गया।
1: तुम मेरे आने से पहले भी सही गा रहे थे रागधानी सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
3: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
3: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
5: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए, आप सुनिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। ग्राम टेरोवाला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका वानियो थांडी। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जाधव। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। आसाम राज्य से हमें फरमाइश भेजी, इन्होंने अपना ज़िले का नाम नहीं लिखा है, हितेंद्र दास ने। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्यन कुमार चंसोलिया, आर्तर्श सार्थक, आलोकिक चंसोलिया, इन सभी ने फरमाइश की है बहु बेगम फिल्म के गीत की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रोशन ने और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। लीजिए अब सुनिए हमारे इन श्रोताओं की पसंद। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली लाडली, बेबी निशा और सभी मित्रगण। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव, संचित कुमार प्रथमेश देशमुख, हर्षद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं आए दिन बहार के इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने।

0: पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था असद भोपाली ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश थी हमारे इन श्रोताओं की। नया पारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज, ईश्वर राज, चंद्रकांत प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जयतेग मीका और मीका बिरक। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो। श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अब हमारे इन श्रोताओं की पसंद। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभाष चित्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुरा से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिश्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। इन सभी ने फरमाइश की है धुंध फिल्म के गीत की, जिसे गाया है आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी के गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

व्हाट्सएप फरमाइश इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं आप अपने ही पसंद के गीत, और इन गीतों की कड़ी में श्रोताओं अब शामिल करते हैं आ गले लग जा इस फिल्म के गीत को, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ ने, लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। सुनने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी और अफजल मलिक, अड़ार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल, मीरा, सोनाली और अनामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से इन्होंने फरमाइश भेजी है इसी गीत की, और ग्राम बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, इन सब की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में लीजिए, अब सुनिए प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद है इन श्रोताओं की। ग्राम जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। तहसील रोड, माफ़ कीजिए, ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र, शत्रुघ्न धाणे, वकील नीनाजी, स्वप्निल धाणे। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण, लव्या, आरव और एस के पप्पी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी ध्वनि गवाणकर। लीजिए सुनिए इन सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको अपनी प्रस्तुति की तरफ ले चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम बता दें श्रोताओं कि यदि आप भी अपनी फरमाइशी गीत हमारे प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। नंबर है 9425702768942570768। इस नंबर पर जल्दी से अपनी फरमाइश हमें लिख के भेज दीजिए अपने नाम और पते के साथ, तो इस कार्यक्रम में आप भी अपने पसंद के गीत हमसे सुन सकते हैं। और चलते चलते अब हम आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म का गीत, लता मंगेशकर के स्वर में, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा, सुमन, माधुरी, किरण, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरमपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं, डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का। तो सुनते हैं सबके पसंद पर ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्ते। एक बात आज मैं कहना चाहूंगी कि ना कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा, ना कोई दिखावा होता है। दोस्तों से मुलाकात का मंजर ही सबसे जुदा होता है। खुलकर हम हंस लेते हैं, जी लेते हैं, दुख बांट लेते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की हर बात प्यारी होती है। कुछ इस तरह की मुलाकात होती है आपकी और हमारी। तो आज फोन करें गीत सुने में हमें इंतजार है आपके फोन का। आप हमें फोन कर सकते हैं 2660902, बाहर के श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। तो इंतजार है हमें आपके फोन कॉल का। हेलो।
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
3: जी जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: मैं उमरिया जिले के ग्राम न्यू दरबार से बात कर रहा हूँ
2: जी। आपका नाम?
3: राजभान विश्वकर्मा
2: जी। फोन करें गीत सुने इसमें आपका फोन लगा हुआ है। और कैसे हैं आप बताएं?
3: हम ग्लाइंड पीरियड में चल रहे हैं मैडम जी, क्या बताएं।
2: जी जी जी जी। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारा जो रेडियो सुनते हैं प्रोग्राम सारे इसके।
3: जी जी जी।
2: गीत संगीत का शौक है आपको?
3: बहुत बहुत कुछ, आज कम से कम 40 वर्ष से।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनते हैं गीत संगीत, आपको रुचि है इसमें।
3: जी
2: चलिए, तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
3: आंदोलन फिल्म का है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं भी तू जरा बता।
2: ठीक है, एक और मूवी बता दीजिए आप हमें जिसका गीत सुनना चाहेंगे।
3: एक है जीवन युद्ध का।
2: जी
3: जीवन युद्ध।
2: जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और आपने फोन किया। जी जी
3: लोग टुकुर टुकुर देखेंगे बजरिया में।
2: जी, बड़ा प्यारा सा गाना आपने पसंद किया है और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी आपका नाम बताएं।
1: जी मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आपका शुभ नाम?
0: जी मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: ओहो श्वेता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। बताइए कैसा मौसम है उधर का, छतरपुर का? बारिश हो रही है?
1: छतरपुर का श्वेता जी बहुत बढ़िया मौसम है। पानी अभी शाम के भी गिरा है और अभी सुबह तो बादल है, अभी तो नहीं गिरा है लेकिन शाम के बहुत अच्छी बारिश भाई। और लगभग लगभग बहुत अच्छा मौसम है और बहुत बढ़िया।

0: खेती किसानी भी बढ़िया है।
1: हाँ, खेती किसानी भी अच्छी हो रही है।
0: हाँ, लेकिन हाँ। बस इतना है कि जो तला तालाब है वो भर नहीं भर पा रहा है, बाकी किसानी के हिसाब का तो पानी बहुत अच्छा बरस रहा है।
1: अभी तो और बरसेगा पानी, है ना, बहुत अच्छे से
0: तो
1: बारिश होगी।
0: बिल्कुल, अभी तो अभी 4-6 नक्षत्र, मघा नक्षत्र भी बाकी है, अभी सुविधा है
1: जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: बिल्कुल श्वेता जी, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल, और गीत के बोल हैं कि चाहत से है बेगानी मेरी सुबह शाम, मेरे दिल के कोरे कागज पे नहीं लिखा है कोई नाम।
1: बिल्कुल, तो ये प्यारा सा गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: और श्वेता जी, साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ हमारे मित्र हैं, उनका नाम बोल दूं?
1: हाँ बोलिए
0: जी। सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा गीत, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और हमारे चित्रकूट धाम से दिनकर सिंह जी हैं, और कानपुर से पूनम बहन है हमारी, पूनम जी
1: जी जी,
0: और हमारे जयपाल यादव जी हैं महोबा से। सारे जितने श्रोता माता है बहन सुन रही, सभी को ये डेडिकेट रहेगा, और ये गीत लगभग पहली बार बज रहा होगा शायद आपकी आकाशवाणी से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी बहन प्रणाम नमस्कार।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
0: जी तो कैसे हैं आप बताएं।
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और बगीचे में बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, सभी लोगों को इस तरह रहना चाहिए, है ना, मस्त व्यस्त अपने कामों में, है ना।
1: जी बहन जी
0: तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: बहना जी एक मूवी का नाम रहेगा रंग।
0: रंग जी,
1: रंग मूवी का कोई हाँ? भी गीत चलेगा बहन।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें और साथ ही साथ हमारे गानों को और रेडियो सेट के प्रोग्रामों को भी सुनें।
1: जी बहन मैं राजू यादव ग्राम उपरह का श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड से। कुछ मित्रों को नाम ले लें बहन।
0: बताइए आपके मित्रों के नाम।
1: हमारे मित्र हैं लोकेन वर्मा जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, छोटे यादव हैं और अनुप कुमार राजपूत जी हैं।
0: जी तो इन सभी को भी मेरा बहुत नमस्कार और आपने फोन किया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: दीदी हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह नागर
1: नागल जी दीदी
0: जी, तो बताएं आप कैसे हैं।
1: बिल्कुल बढ़िया हैं। आकाशवाणी का बचपन से शौक है रेडियो सुनने का।
0: अच्छा,
1: और जो आप लोगों की बातचीत रहती है सुझाव देते हैं आप लोग, हम बड़े ध्यान पूर्वक कार्यक्रम सुनते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है रेडियो पर?
1: देखिए आपके कार्यक्रम में तो जो फोन करें जी सुने तो जो भी हम सुन ले, तो और भी अन्य भी कार्यक्रम आते हैं तो समय समय पे हम सब कार्यक्रम सुनते हैं।
0: चलिए, हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतनी ध्यान से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन गीत के बोल हैं, तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में।
0: फिल्म का नाम एक और बताएं आप, इसका बताएं।
1: चलिए
0: एक और बताइए मूवी का नाम।
1: चलो तो फिर फिल्म का नाम है
0: नहीं आप
1: फिल्म का सुनवा दें दीदी आप।
0: नहीं आप बताइए आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहें।
1: नहीं तो निगाहें का सुनवा दो आप।
0: निगाहें का, चलिए
1: जी। गीत के बोले हैं सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कब करोगे।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया इसके लिए।
1: मौसम कैसा है?
0: अच्छा है मौसम, बारिश भी हो रही है और काफी खुशनुमा हो गया है मौसम। जी आपके इधर भी बारिश हो रही है?
1: हमारे इधर तो बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, चलिए हम यही कामना करते हैं कि आपके इधर भी खुशनुमा मौसम हो जाए। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी है ना? तो दीदी आपकी बातचीत को देते हैं तो हम लोग भरपूर आनंद भी लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपने फोन किया इसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते,
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।
0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुनने में स्वागत है आपका, नाम बताएं।
1: मैं सुरान पाल से गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे।
0: आपकी जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम बाबूपुरा
0: जी,
1: तहसील को जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जालौन से जी, तो बताएं, रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं, बहुत पहले से सुनते हैं।
0: जी जी, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: गोपी का सुनवा दीजिए।
0: जी, गोपी का कौन सा गीत?
1: रामचंद्र कहेगा इस यार से।
0: बड़ा प्यारा सा ये कहले भजन है। क्या करते हैं आप?
1: मैं शिक्षक हूँ दीदी।
0: जी जी जी, टीचर हैं आप? अच्छा अच्छा, चलिए। तो आप रेडियो भी सुनते हैं अपने काम के साथ साथ, ये जानकर हमें खुशी हुई।
1: सुन लेते हैं, समय मिल जाता है।
0: जी, खुशी हुई हमें ये जानकर, और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: धर्मेंद्र हरवार, ग्राम बरोदी वल्लभ, जिला सागर, एमपी से बोल रहा मैम।
0: जी, तो कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम।
0: अच्छा, कैसा मौसम है आपका उधर का, सागर का?
1: परसों तो पानू दो दिन होगा अभी नहीं गिरा।
0: अच्छा, तो राहत तो मिली है, होगी आपको ठंड, है ना? हाँ।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका
1: जी। नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: हाँ, फिर से नाम बताएं आपका।
1: जी तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं तो दुकान चलाता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा, तो साथ साथ रेडियो भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, आपके बेटे बेटे प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: आपको कुछ क्या लाभ मिलता है, आपको रेडियो से जानकारी मिलती है?
1: हाँ मिलती है मैडम जी, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, बढ़िया।
0: और
1: मजा जाता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है।
0: जी जी, और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है आपका गानों से?
1: मनोरंजन भी होता है मैडम जी।
0: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सुनते हैं आप प्रोग्राम हमारे? कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप या सुन पाते हैं बताएं?
1: ये फोन करके सुने और वो आपकी फरमाइश है और जो भी मतलब जो कार्यक्रम आते हैं फिल्मी की तरह सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैडम
0: जी। हमें जानकर खुशी हुई।
1: दुकान तो, दिन भर रेडियो चलते रहता है।
0: जी जी, हमें जानकर ये खुशी हुई। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मुझे गीत सुनना है, गायककार मुकेश की आवाज है। मुझे फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, पर गीत के बोले जो हो रहे तार मिले नदी के तल जल में।
0: अच्छा,
1: जो हो रहे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कोने के जल में, वही जान लेना।
0: बिल्कुल, बड़ा प्यारा गीत है ये। और एक मूवी का नाम बता दीजिए आप जो आप सुनना चाहते हैं।
1: नाम और बता दूं मैडम जी, वो फिल्म का नाम है अंकुश।
0: अच्छा जी, तो हम चाहेंगे
1: हमें देना दाता।
0: बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें, इसी आशा के साथ कि ये मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जारी हमेशा। लेकिन अब मुझे दीजिए अनुमति आपकी रेडियो मित्र श्वेता की ओर से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में डॉ. कलाम का अद्वितीय योगदान अविस्मरणीय रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खंडवा में आज नए कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने भगवान महाकाल के दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनवाते हैं मीरा का मोहन फिल्म से ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खुरेसी राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलबी रोहित, लल्लूराम, पूरन, रोहित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। नांदगेड़ी से लिखने वाले हैं प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी फिल्म का नगमा, आवाज़ें अशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीत है राजेंद्र किशन का, तस बनाई मदन मोहन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं इंदौर से अनिल, नेहा, सबीहा, कमल, पूरन, सुषमा और स्मिता। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है साथी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने नवाब आरजू के बोल हैं और नदीम श्रवण ने इसकी तर्ज बनाई।

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमरा गांव से वसीमुल्ला अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अतिबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, खातून अंसारी असमा और गुलफराज भागलपुरी, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, आप सभी ने सुनना चाहा है फिदा फिल्म का नगमा। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत समीर का, तर्ज अनु मलिक की।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनकी परिवार के सदस्य, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू और मोहित नागर। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज़ों में हाथी मेरे साथी फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलाने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री

0: सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोकर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्रति सोमवार दोपहर 1 बजे।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे धारावाहिक का 12वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 12वां भाग। अब तक आपने सुना कि चंद्रसेन की अवंती में वैसिका से भेंट होती है। वो उसकी सादगी और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे बहन बना लेता है। चंद्रसेन आश्रम जाकर भेषज्ञ त्रिलोचन को वैसिका के बारे में विस्तार से बताता है। अब आगे

उज्जैनी से लौटा चंद्रसेन कुछ खिन्न था और कुछ प्रसन्न। खिन्न इसीलिए कि ठीक से उज्जैनी का दर्शन नहीं कर पाया। उसने देखा कि राजधानी में कहीं अवकाश ही नहीं है, जिसे देखो वही व्यस्त। कहीं धन पद वैभव के लिए प्रतियोगिता है, तो कहीं पेट को भरने की प्रतिस्पर्धा।

में मनुष्य नट, विट, भाट बन गया है। सुरा और सुंदरी का ऐसा निर्बाध विनिमय उसकी कल्पना से बाहर था। महामात्य के व्यवहार से वो प्रसन्न था और वैसिका के बंधु होने से आत्मगर्वित। एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने पूछ ही लिया,

0: आर्य त्रिलोचन, एक बात पूछनी है।
1: एक ही क्यों, दो तीन जितनी चाहे पूछिए, पर औषधि शोधन की गति मंद ना पड़े।
0: आपकी मुखाकृति वैसिका दीदी से बहुत साम्य रखती है।
1: कौन वैसिका?
0: बताया तो था आपको, वही जिन्हें मैंने उज्जैनी में अपनी दीदी माना है।
1: ओ हाँ, बताया तो था तुमने।
0: वे औचक मेरा मुंह देखती रही और फिर पूछा, तुम्हारे भेषज क्या दक्षिणत्य हैं?
1: फिर तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा, हमारे आश्रम में कोई किसी की कुल जाति आदि नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं जानता। किंतु उन्होंने आग्रह किया कि आपसे पूछूं कि क्या आप दक्षिण देश से हैं और कलाधर हैं? यदि वे भी हैं तो क्या आपके बाएं कपोल पर किसी घाव का चिन्ह है? अरे आर्य, आपको क्या हुआ? आप स्वस्थ तो है ना आचार्य?
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
0: आश्चर्य आचार्य, वैसिका दीदी ने भी आपकी वह पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
0: आचार्य क्यों आचार्य?
2: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैसिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
0: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
2: देखो, मेरे बाएं कपोल पर क्षत्य का चिन्ह है।
0: अरे हाँ,
2: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
0: अच्छा,
2: चिन्ह रह गया।
0: हाँ,
2: मैं दक्षिणत्य हूँ।
0: अरे,
2: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की जल यात्रा में मेरा सब कुछ छिन गया था।
0: क्या वैसिका दीदी ने ये सब क्यों पूछा?
2: गोदावरी में हमारी नाव पर दस्यु आक्रमण हुआ था, हमारे सेवकों की हत्या करके दस्यु ने मां की हत्या कर दी। मुझे गोदावरी में धकेल कर वो नौका का अपहरण करके ले गए। मैंने उन गिद्धों को मां की मृत देह से आभूषण नोचते देखा है।
0: देर में रखिए,
2: मुझसा हतभागा कौन होगा? उस नौका पर मेरी सत्या दीदी थी। जाने क्यों लगता है कि तुम्हारी वैसिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है। मैं घड़ी दो घड़ी में निकलता हूँ चंद्र।
0: आचार्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे वहां कई लोग पहचानते हैं। महामात्य, वैसिका दीदी,

0: आचार्य त्रिलोचन उज्जैनी पहुंचते हैं। वो सीधे महालय पहुंचते हैं और प्रहरी को परिचय देते हैं।
1: मेरा नाम त्रिलोचन है, सेवाश्रम का भेषज्ञ हूँ। 3 सप्ताह पहले मेरे सहयोगी चंद्रसेन यहाँ अश्व नीलमणि को लेकर आए थे। मुझे देवी वैशिका से भेंट करनी है।
2: मान्यवर, राजमहालय में प्रवेश केवल महामात्य के अनुमति पत्र से ही संभव है। हम विवश हैं कि आपको प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूं सूचना थे कि वैशिका देवी कल ही महादेवी के संग किसी यात्रा पर जा चुकी हैं।
1: कब तक लौटेंगी?
2: महादेवी के यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी अमात्यों और आस्पदों को भी नहीं होती, और हम ठहरे साधारण सेवक। वह आज भी लौट सकती हैं और कल भी, या अठवारे पखवारे में भी। सब अनिश्चित है।
1: पर कहां से जानकारी मिलेगी?
2: मान्यवर, हमें क्षमा करें।
1: अच्छा, ये तो बता सकेंगे कि यहाँ एक चिकित्सक मृगांक दत्त रहते हैं। मेरे सहपाठी हैं, आप उनके आवास आदि की जानकारी दे सकेंगे?
2: जी जी, अवश्य मान्यवर। श्रीमान मृगांक दत्त उज्जैनी के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आप यहाँ से निकलकर दक्षिणी मार्ग लें, आगे एक त्रिपत आएगा, वहाँ बाएं मुड़कर चलें। कुछ ही दूरी पर उनका आवास और चिकित्सालय है। आप किसी से भी पूछ लें, धन्वंतरी कुंज।
1: सचमुच दर्शनीय है ये महानगरी, कनकश्रृंगा उज्जैनी। वैभव और ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु संभवतः ये वास्तविक चित्र ना भी हो, कुछ ऐसा हो जो अदृश्य है। किसी ने कहा भी है कि हर वैभव के नीचे कोई हाहाकार दबा होता है। त्रिपथ पर चलते चलते पर्याप्त देर हुई, किसी से पूछ तो लूं कि विख्यात चिकित्सक मृगांक दत्त कहाँ निवास करते हैं।
3: अरे बंधु ठहरिए।
4: जी मैं,
1: हाँ, यहाँ धन्वंतरी कुंज किस और है?
4: धन्वंतरी कुंज अर्थात चिकित्सक महाशय का आवास।
1: हाँ हाँ, वही भेषज्ञ मृगांक दत्त रहते हैं वहाँ।
4: किंतु आप तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।
1: बंधु, मैंने आपसे मार्ग की जानकारी चाहिए है।
4: आप तो बुरा मान गए, क्षमा करें। मैंने तो इसलिए पूछा था कि यदि आप औषधि या उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि धन्वंतरी कुंज में केवल श्रेष्ठियों और श्रीमंतों के उपचार का स्थान है।
1: तो मृगांक दत्त निर्धन वंचितों का उपचार नहीं करते?
4: अरे निर्धन वहां पहुंचेगा ही क्यों, उनका उपचार इतना व्यय साध्य है कि श्रमिक और कृषक उपचार के स्थान पर मृत्यु को वरण्य मान लेते हैं। अरे नहीं नहीं, भ्रम में ना पड़िएगा। और भ्रम में पड़े भी क्यों ना आप, बाहर से आए प्रतीत होते हैं। अरे राजधानी में भ्रम ना पाले जाए तो उसे राजधानी कौन कहेगा? और मुझे क्या करना, 4 आवाज छोड़कर सीधे चले जाइए, धन्वंतरी के कुंज में पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी वहां, रथ और शिविकाओं का रोगग्रस्त संकुल, पहचान लेंगे आप।
1: लगता है बंधु तुम किसी कारणवश मृगांक से रुष्ट हो। कुछ बातें रोचक हैं तुम्हारी, तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। कभी अवसर आए तो अवश्य।
4: मैं नहीं मिलूंगा, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। मैं चला
1: गया। विचित्र जीव है वो, असंतुष्ट, संभवतः अपने आप से भी असंतुष्ट। ऐसे लोग भी होते हैं। भीड़ से भरा आवास आ गया, संभवतः मृगांक यहीं मिले।
5: अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो भाई?
1: मृगांक दत्त से मिलना है।
5: उपचार का समय समाप्त हुआ, कल प्रातः काल आना और अपना कर्मांक अंकित करवाना।
1: उपचार के लिए नहीं।

0: ही भेंट के लिए आया हूं। सहपाठी मित्र हूं मृगांक का।
1: अन्यथा ना ले महोदय, मैं तो आज्ञा पालक अनुचर मात्र हूं। स्वामी के अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं है यहाँ।
0: और अनुमति कौन देगा? इन प्रवेश करने वाले लोगों को तुम रोक नहीं रहे। इनका ऐश्वर्य तुम्हारे कर्तव्य पालन में बाधक है, यही बात है ना? अस तुम मेरे आने की सूचना मृगांक को जाकर दो, या मैं वैसे ही प्रवेश करूं। तुम मुझे रोक ना पाओगे बंधु। हाँ, यदि मृगांक मिलना ना चाहे तो अलग बात है।
1: देव आप इस कक्ष में जाकर विश्राम करें, मैं उनको खबर देता हूं।
2: त्रिलोचन अंदर कक्ष में जाकर ऊंचे स्वर में पूछते हैं,
0: श्रीमान मृगांक कहाँ है?
3: अरे दुष्ट त्रिलोचन, वर्षों से अता पता नहीं आज आकाश से टपक पड़े अचानक। मैंने तो सोचा था कि कोई यक्षिणी तुम्हें उठाकर ले गई है। इधर बैठ शुभंकर
4: जी।
3: तुम अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो और बाकी के रोगियों को देख लो, मैं अब अवकाश लूंगा
4: जी।
3: मेरा बिछड़ा हुआ मित्र युगों बाद मुझे मिला है।

0: त्रिलोचन, तुम आए हो तो कुछ दिन रुको भी। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे अपशब्द तो मेरे लिए नए नहीं है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं उतना ही नैतिक हूँ जितना आवरण के लिए आवश्यक है।
1: जानता हूँ।
0: बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि स्मृतियों के पृष्ठ उलटूं और खोजूं कि कहाँ है मृगांक।
2: यह तुम कह रहे हो मृगांक? आश्चर्य है, तुमने तो 2 वर्षों की अवधि में ही ये सब वैभव, इतना सम्मान पा लिया है। तुम परम सुखी हो, तुम्हें कैसा क्लेश?
0: सभी बातें होंगी मित्र, तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ बस। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में जो विरक्ति, जो व्यंग है, उसके संग थोड़ी सी प्रतीति मुझे मिल जाए। तुम मेरे अनन्य और एकमात्र मित्र हो त्रिलोचन, सहपाठी। संसार में हमने साथ साथ अनुभव के गवाक्ष खोले थे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? अच्छा ये तो बताओ कि उज्जैनी आने का तुम्हारा हेतु क्या है? इतना तो मैं जानता हूं कि महाकाल के दर्शन करने तो तुम आए नहीं, और मेरे आवास तक पहुंचने की कृपा की तो वो भी मैत्री की उमंग में नहीं हुई होगी। फिर भी तुम जो चाहो, भ्रमण, वास, विलास या मेरा उपहास, करते रहना स्वतंत्रता पूर्वक। यहाँ रहोगे तो देखोगे कि जीवन से मैंने बंधना तो सीख लिया है, तथापि मैं नीच नहीं हुआ हूँ।
2: निश्चय ही तुम्हारे पास आने में मेरा स्वार्थ है मृगांक। स्वार्थ ना होता तो उज्जैनी आता ही क्यों? आकर भी संभव है कि तुमसे मिले बिना लौट जाता, पर यह मिलन भी अच्छा ही रहा। तुम्हारी जो छवि मेरे मन में बनी थी, वो इस मिलन के बाद कुछ कुछ टूट रही है।
0: छवि तो एक मुखौटा है मित्र, मैं तुम्हें केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि अवंतिका राज्य धर्म और व्यापार का केंद्र है। तीनों यहाँ अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट स्तर पर विद्यमान है। यहाँ निकृष्ट को परिष्कृत करके उत्कृष्ट के समकक्ष खड़े कर देना ही कौशल समझा जाता है, जिसके लिए असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है मित्र। इसलिए अनित्य, असत्य, असत्याभास यहाँ के प्रभु वर्ग की जीवन शैली में आ गए हैं। महाकाल का घंटा और भी वेग से बजता है, प्रार्थना के स्वर ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं। ये अवंतिका है मित्र। लेकिन तुम्हारे लिए आश्रम ही उचित स्थान है। तुम्हें सही स्थान पर ले जाकर पटका है देव ने कि पट्टियां बदलते रहो और कुष्ठ रोगियों, उन्मादियों, लूले लगनों का उपचार करते रहो।
2: देखूंगा, तुम्हारी उज्जैनी भी देखूंगा। सांध कर्म से निवृत्त हो लूं, फिर जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। अपने आने का हेतु भी तो तुम्हें बताना है।

0: हम जा कहां रहे हैं मृगांक?
1: आए हो तो उज्जैनी का दर्शन भी कर लो मित्र, प्रारंभ महाकाल से।
0: आज स्नान नहीं कर पाया हूँ, वस्त्र भी मलिन है, शुचिता का ध्यान भी तो रखना होगा।
1: फिर शिप्रा के इन घाटों की शोभा देखो मित्र, देखो तटवर्ती स्तंभ दीप जल में यूं प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे एक समानांतर उच्च से आलोक प्रस्फुटित हो रहा हो। कितनी सुंदरियां दीप दान के लिए यहाँ पर पंक्ति वक्त खड़ी है, पता नहीं चलता कि दीप की दीप्ति उनके मुख पर है अथवा मुख से ही दीप्ति प्रकट हो रही है। ये उज्जैनी के श्रीमानों का घाट है, अभी कुछ देर में यहाँ रसिक समूह एकत्र होंगे, सुंदरियों में अपनी प्रेसी की कल्पना करेंगे और उन पर प्रणय पुष्प लीचेंगे। ये अवंती के शरदोत्सव का पूर्वाभ्यास है मित्र।
0: सचमुच मन भावन है ये दृश्य, किंतु मुझे सेवा आश्रम की स्मृति हो आई। वहां निर्धन विपन्न अशक्त रोगियों को छोड़कर आया हूँ, अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारी इस अवंती में।

0: मैंने तुम्हें कहा था अवंती केंद्रीय नगर है, राज, वाणिक और धर्म तीनों का केंद्र, किंतु समय नहीं है किसी के पास त्रिलोचन। सब कुछ है, समय नहीं। तुम जिससे भेंट करना चाहो वह अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होता। यहाँ अपना समय साथ रखना होता है मित्र, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। महामात और महाभोग की नगरी है, यहाँ महाकाल हैं, यहाँ महामाया भी हैं, महाराज, महारानी, महामात्य, महास्पद यही हैं, महासेन, महाबलाधिकृत, महाश्रेष्ठी, महापंडित, महानायिका और महाधूर्त और महालंपट भी, इनसे महानगर उज्जैनी की संरचना होती है मित्र। लो, अब हम तुम्हारी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
1: उनका रथ अब श्रमिक वर्ग की नगरी से निकल रहा होता है।
0: सखा त्रिलोचन, ये भी उज्जैनी है किंतु ये कनक श्रृंगा नहीं है। यहाँ अनुचर, किंकर, दास कुलेक और हस्तिका बसते हैं। नदी तट पर जलते हुए चूल्हों की उठती हुई आग को देखते हो? वहाँ भुने हुए मांस की गंध से कुछ सुनने का प्रयास करो। अनेक कहानियां तुम सुन सकोगे। इस गंध में पसीना भी है और विवशता भी। मद की गंध और पथ के इधर उधर ग्राहक के साथ विनिमय के लिए प्रस्तुत रूप जीवाओं का सौंदर्य भी, यदि तुम उन्हें सुंदर कह सको तो।
2: ये मुझे कहां ले आए मृगांक? यहां तो सांस लेने में भी कष्ट है। ये तो नरक है, नरक।
0: मित्र, इसी नरक से चलकर मैं उस धनवंतरी कुंज तक पहुंचा हूँ। और त्रिलोचन, यहां मैं अब कभी वापस नहीं लौटना चाहता।

0: त्रिलोचन, राजधानी के दोनों चेहरे तुमने देख लिए, अब कहाँ चले बताओ?
1: आवासी लोग चले, मुझे और कुछ देखने की रुचि नहीं रही। मृगांक, तुम्हारा आना जाना राजप्रासाद में तो होता ही होगा।
0: हाँ, उत्सवों आयोजनों के अवसर पर मिलता रहता है, चिकित्सा के लिए जाने का अवसर कभी नहीं मिला।
1: अच्छा, मुझे ये ज्ञात करके बताओ कि महारानी पिंगला कहाँ गई हैं और वो कब तक लौटेंगी?
0: ओ, महारानी से भेंट करना है, सीधी छलांग लगा रहे हो मित्र। वैसे मैंने सुना है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञातवास पर हैं और महारानी भी वहीं चली गई हैं। ज्ञात करने में कुछ समय तो लगेगा। मेरी एक रोगिणी है जिसका आना जाना अंतापुर में है, सुनते हैं कि वो महारानी के साथ चौसर खेलती है।
1: तो कल तक ज्ञात कर सकोगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु इस संबंध में जानकारी मेरे लिए तुरंत आवश्यक है।
0: कब तक ठहर सकते हो मित्र?

0: सूचना मिल जाने तक, किंतु दो चार दिन बस।
1: मैं कल प्रयास करता हूँ महादेवी के संबंध में जानकारी जुटाने का। पूछा इसलिए कि राजा और राज परिवार के आसपास सया से एक रहस्य का वातावरण बुन दिया जाता है। सामान्य चीजें भी रहस्य में लपेट दी जाती हैं और अत्यंत गोपनीय विषय जानबूझकर प्रचारित किए जाते हैं। वैसे सुना है अवंती राज परिवार के रहस्य ठीक ठीक बस तीन ही व्यक्ति जानते हैं।
0: कौन है वो?
1: महामात्य पूर्णरथ, अंतेवास का कंचुकी प्रमुख और पिछले वर्ष से चर्चा में आई एक दासी। कहा जाता है कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है वो। राजा भर्तहरि, रानी प्रिंगला और महामात उसकी सलाह का सम्मान करते हैं। उस दासी का नाम है वयसिका।
0: तुमने वयसिका को देखा है मृगांक?
1: सार्वजनिक उत्सवों में दासियों को प्रायः अलग ही रखा जाता है। मैंने उसके कारण पर बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कुछ दासियां अपनी स्वामिनियों से अधिक सुदर्शना और सुसंस्कृत होती हैं। अहम टूटता होगा उनका। वैसे मित्र, मैंने दूर से वयस्का को देखा है। सुंदर है, वय भी कम है। मेरा आशय है अपनी स्वामिनी महारानी पिंगला से।
0: तुम मुझे वयस्का से ही मिलवा दो मृगांक।
1: हाँ, ये अपेक्षाकृत सुगम होगा। लेकिन मित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो महारानी से या वयसिका से। तुमने मुझे कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा।

दूसरे दिन रगांक को ये सूचना मिल गई कि महारानी पिंगला किसी बड़े अनुष्ठान के लिए गुप्तवास में हैं। वैसिका भी उनके साथ ही गई है। वो दोनों कहाँ हैं ये बात चंपा भी नहीं जानती। केवल महामात्य पूर्ण रथ को उसका अनुमान है और राजा भर्तृहरि भी राजधानी में नहीं है। संभवतः वो भी अज्ञातवास पर कहीं निकल गए हैं।

अभियाप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चेतना भारद्वाज, चंद्रसेन बद्रवास्ती, त्रिलोचन उबैदुल्ला खां, प्रहरी मनोज राजानी, व्यक्ति भागीरथ साहू, द्वारपाल वकार हुसैन और मृगांक बालेंद्र सिंह, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय से निकल जाते हैं। रानी पिंगला को राजगुरु देवश्री ध्यान लगाकर बताते हैं कि राजा दक्षिण दिशा में हैं, वाहन और अस्त्र के बिना। व्यथित होकर रानी पिंगला राजा की वापसी के लिए कठिन अनुष्ठान का निर्णय करती हैं। इस प्रसंग से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

0: कामिनी काय कांतारे, इसकी 12वीं कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:58 होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रदेश की ई प्रवेश प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 जुलाई तक प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जिंदगी बदल रही है, जिससे हमारी आदतें बदल रही हैं और साथ ही बदल रहा है हमारा जीने का तरीका। श्रोताओं, आज हमारी हथेली में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन हमें

पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम ज्ञान भी वहाँ लेते हैं, काम भी करते हैं, मनोरंजन भी वहीं ढूंढते हैं और अपनों से भी जुड़ते हैं वहीं। लेकिन श्रोताओं, सुविधा और आवश्यकता के बीच ये स्क्रीन अनजाने में हमसे बहुत कुछ छीन भी रही है। ये हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। श्रोताओं, आज का समय तकनीक से दूरी बनाने का नहीं बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने का है, क्योंकि जब तकनीक समझदारी के साथ अपनाई जाती है तभी वह जीवन को बेहतर बनाती है। यदि तकनीक का असंतुलित उपयोग किया जाए तो इससे कई समस्याएँ होती हैं। श्रोताओं, लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिरदर्द, गर्दन और कमर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग तो रात में भी देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं, जिससे शरीर का प्राकृतिक नींद का चक्र प्रभावित होता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, याददाश्त और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। श्रोताओं, इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या को अधिक संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान हम बना सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कमरे की रोशनी को संतुलित रखें। मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करते समय सही पोस्चर में बैठें। गर्दन को झुकाकर लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग ना करें। यदि आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन पर होता है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा टहलें, शरीर को स्ट्रेच करें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहें। सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग ना करें और सबसे ज़रूरी, जब परिवार के साथ हो, भोजन कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों तब भी मोबाइल का उपयोग ना करें। यानी जब स्क्रीन की ज़रूरत हो तभी उसका उपयोग करें और हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के भी अपने लिए निकालें। श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ स्क्रीन के साथ नहीं उसके बाद भी बेहद खूबसूरत है। कभी अपनों के साथ खुलकर हंसिए, कभी उगते सूरज को देखें, कभी पेड़ों की छांव में कुछ पल बिताएं और बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करिए।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में हमारी त्वचा और बालों को सबसे अधिक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। तो किस तरह हम अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करें, इस विषय पर आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्वा शारदा और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने।
1: नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी ओपीडी में ज्यादातर मरीज किन बीमारियों के आपको देखने मिलते हैं?
2: क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सबसे ज्यादा मरीज जो मेरे पास इस समय मेरी ओपीडी में आ रहे हैं, वो पहले तो फंगल इन्फेक्शन, जिसको दांत खाज खुजली बोलते हैं, दूसरा बालों के झड़ने से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, और तीसरा बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से एक्ने के पेशेंट्स या पिंपल के पेशेंट्स भी अभी फिलहाल काफी ज्यादा है ओपीडी में।
1: आपने जैसे दांत खाज खुजली के पेशेंट्स बोले, तो ये किन वजहों से होते हैं ये बीमारियां?
2: दांत खाज खुजली पसीने की बीमारी है। अगर पसीना आप समय समय से अपने शरीर से हटा रहे हैं, या आप सूती के कपड़े पहन रहे हैं, या आप लूज कपड़े पहन रहे हैं, बहुत टाइट कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह है वो नहीं पहन रहे हैं, तो दांत की समस्या आपको नहीं होगी, है ना। बट अगर वही आपने टाइट कपड़े पहनने चालू कर दिए, आप बिल्कुल कुछ पाउडर नहीं लगाते हैं, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा पसीना आता है, तो फिर दांत की समस्या होना बहुत ही निश्चित है
1: जी। तो इन बीमारियों से जैसा आपने बताया कि हम ढीले कपड़े पहन के, सूती कपड़े पहन के बच सकते हैं, सफाई बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैम आपने बताया कि पिंपल्स की समस्या, एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा आती है, फुंसी फोड़े ये बहुत ज्यादा होते हैं बारिश के मौसम में, क्या इनका भी यही कारण है?
2: हाँ, मतलब जो ग्लैंड होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, जिससे अपने आप शरीर में तेल निकलता है जिसकी वजह से या तो पसीना निकलता है, तो बारिश के समय में इनका ब्लॉकेज हो जाता है, तो ज्यादा तेल या ज्यादा पसीना निकलने की वजह से पिंपल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है अभी फिलहाल ओपीडी में
1: जी। क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं कि ये बीमारियां हमें ना हो?
2: जो दांत खाज खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम और सबसे स्पेसिफिकली ये जो बारिश का मौसम होता है, बिल्कुल सूती के कपड़े ही पहने, ढीले ढीले कपड़े पहने, जीन्स वगैरह इस मौसम में बिल्कुल भी ना पहने। दूसरा, अंडरगारमेंट्स जो पहनते हैं वो भी बिल्कुल लूज फिटिंग के पहने। तीसरा, किसी प्रकार का एंटी परस्पिरेंट या तो डिओड्रेंट या तो सबसे जो बेस्ट होता है किसी भी प्रकार का कोई भी एक पाउडर लगाएं। सुबह तो सब नहाते हैं, बट एक बार रात में सोने से पहले अपने शरीर पे जितना भी पसीना होता है, जितनी गंदगी होती है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो इस मौसम में, तो स्पेसिफिकली रात में नहाना ही चाहिए एक बार रात में सोने से पहले। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई एंटी फंगल सोप या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको साफ सफाई रखनी है, अपने जो तकिए की खोली आप उसको भी साफ रखें, कपड़ों को भले ही बारिश का मौसम हो बट कोशिश करें कि वही पुराने कपड़े वापस ना पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने
1: जी। इसके अलावा इस मौसम में क्या मैम बालों की झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है?
2: डेफिनेटली बढ़ जाती है बालों की समस्या, मतलब यही मौसम होता है जब मुझे लगता है सबको लगता है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे, मानसून जाता है, बारिश आती है, बाल झड़ने लगते हैं। हमारे जो बालों का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होता है कि अगर पानी हमारे बालों पे बहुत देर तक पड़ा रहता है तो हमारे बालों के अंदर किसी प्रकार के ना पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी बालों के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से जो बलूनिंग हो जाती है बालों की, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है बालों में, तो अगर किसी भी चीज में स्वेलिंग हो जाएगी तो वो उसके ब्रेक होने की ज्यादा संभावना होती है। तो मैं सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ जिनको भी हेयर फॉल की समस्या स्पेसिफिकली मॉनसून के वेदर में होती है, अगर कोई दूसरा न्यूट्रिशनल कॉज ना हो कि खून में कोई इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो मैं अगर सिर्फ मॉनसून से रिलेटेड होता है, मैं बोलती हूँ कि मॉनसून में पहली बात तो बाल सबसे पहले तो धोना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल नहीं धो रहे हो, हर दूसरे दिन बाल धो। अगर बारिश के मौसम में अगर आपने बाल धोए हैं या बारिश में भीगने की वजह से आपके बाल गीले हो गए हैं, तो बाल पहली बात तो गीले कभी भी नहीं रखने हैं। आप घर जब भी पहुंचे या आप ऑफिस पहुंचे, आप एक जो सॉफ्ट वाले टॉवल्स आते हैं, जो फाइबर वाले टॉवल्स आते हैं, उससे पहली बात तो बाल अच्छे से सुखाएं। और जो ड्रायर होता है, ड्रायर में दो मोड होते हैं, तो एक हॉट हीट आती है या कोल्ड आती है, कोल्ड पे रख के मुझे लगता है सबको सुखा लेना चाहिए
1: जी,
2: है ना, ताकि अगर बाल सूखे रहेंगे तो फिर उसमें बलूनिंग नहीं होगी, बालों में स्वेलिंग नहीं होगी और उसकी वजह से बाल ब्रेक नहीं होंगे और आपके बाल बचे रहेंगे
1: जी। मैम एक

0: और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सिर्फ टीनेजर्स में ही नहीं, हर उम्र के लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हम स्किन की या बालों की बात करें तो। तो आपके पास कोई सुझाव है हर उम्र के लोगों के लिए?
1: ओवरऑल सबको मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका स्किन का टाइप क्या है ना। स्किन का टाइप डिफाइन हो जाता है जब आप टीनेजर से आप स्टार्ट करते हो कि किसी का ऑयली स्किन होता है, मतलब ज्यादा तेल वाला स्किन होता है, या किसी का बहुत ही रूखा स्किन होता है, बहुत ड्राई स्किन होता है, या कभी कभी पेशेंट्स होते हैं कुछ भी लगाने से स्किन सेंसिटिव टाइप होता है, या कभी कभी पेशेंट्स का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कहीं से ड्राई कहीं से ऑयली। तो पहले तो जानकारी पता होना चाहिए कि अपना स्किन का टाइप क्या है। जब स्किन का टाइप आपको पता है उसके बाद आपको, मुझे लगता है दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सबसे पहली चीज़ तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, और दूसरा सनस्क्रीन, है ना। सनस्क्रीन भी ऐसा नहीं कि कोई भी सनस्क्रीन में भी बहुत प्रकार की वैरायटी आती है। मैं बोलूंगी कोई भी एक डॉक्टर रेकमेंडेड जो सनस्क्रीन होता है ना, क्योंकि उसमें पता है कि भाई अगर SPF 30 है तो SPF 30 ही है, ना कि 5 और 6। तो मुझे लगता है ये दो चीज तो सबको लगानी ही चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे, मुझे लगता है आज डॉक्टर की सलाह लेके आप ये दो चीजें तो मुझे लगता है हर इंसान को लगानी चाहिए। इसके बाद एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश का मतलब ये नहीं होता कि अगेन कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका ड्राई स्किन है उसके लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, ताकि अपनी जो त्वचा है उससे अच्छी तरीके से क्लीन हो और बहुत ज्यादा रूखी भी ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप धीरे धीरे मूव करते जाइए कि अगर कोई बच्चा है उसको एक्ने है तो उसको पता होना चाहिए उसको अपने चेहरे पे क्या लगाना है। कोई अगर लड़की है और उसको पिगमेंटेशन की समस्या है, या उसको ऐसा लगता है टैनिंग की समस्या है, तो उसको पता होना चाहिए वो अपने स्किन पे कुछ एक चीज़ जो अपने चेहरे पे लगा सकती है। वही 30 में जब पेशेंट जाते हैं 30 साल की उम्र में, तो उनको पता होना चाहिए उस समय रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक प्रिवेंशन के तौर पे एक आध रेटिनॉल उनको लगाना चालू कर देना चाहिए। और 40 और 50 में तो क्या होता है रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, तो उस टाइम पे एक अच्छा अगेन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश तो पता ही होना चाहिए, बट एक आध अच्छा एंटी एजिंग क्रीम अगेन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उनके अंडर गाइडेंस में लेकर ही मुझे लगता है सबको स्टार्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो मतलब हर बीमारी की तरह चर्म रोग के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास तब ना जाएं जब बहुत देर हो चुकी हो, पहले से ही एक डॉक्टर की सलाह लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपको पता हो कि आपको आपकी त्वचा का ध्यान किस तरह रखना है। सही,
1: बिल्कुल जी।
0: आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक एक्सपर्ट बनकर अपने सुझाव देता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्टर के पास जाए और उनसे पूछे कि हमारे लिए क्या सही है। ऐसे में हम रोज नए नए केमिकल्स का नाम सुनते हैं, तो क्या इतने केमिकल्स चेहरे पर यूज करना, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना, ये सही है? कभी कभी हमें ये तक देखने मिला है कि 5 से 12 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन बताया जाता है और हर उम्र के लोग उसे कर भी रहे हैं।
1: पहली बात तो आपको इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि कौन सही बता रहा है और कौन पेड प्रमोशंस कर रहा है या कोई डॉक्टर नहीं है। आज की तारीख में कोई इन्फ्लुएंसर से लेकर हर कोई स्किन के बारे में, मैंने तो न्यूट्रिशनिस्ट, इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स तक ये बताते हैं कि स्किन का रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्चुअली में स्किन के लिए एक्सपर्ट है, एज इन उसके पास कोई स्किन से रिलेटेड डिग्री है। और डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। पहली बात, स्किन के डॉक्टर वही होते हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास MD या DVL या DDVL की डिग्री होती है। अगर ये वही डॉक्टर हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और आपको वो कुछ बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है 90% टाइम पे वो सही बता रहे होंगे। बट वही चीज़ अगर आपको कोई पार्लर की लेडी बता रही है जिसको स्किन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है उसके पहले यूज़ करने के पहले एक बार आपको डॉक्टर की सलाह जरूर से लेनी चाहिए। कुछ भी 5 स्टेप स्किन केयर और 10 स्टेप स्किन केयर, मुझे लगता है पैसे का सिर्फ वेस्टेज है। सिर्फ एक भी चीज अगर आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के अलावा, मुझे लगता है वो भी बहुत वंडर्स कर देती है, इंस्टेड कि आप इस प्रकार के इतने स्टेप स्किन केयर रेजिम करें। तो मुझे लगता है कि सलाह सिर्फ उनसे ले जिनको इसकी जानकारी हो।
0: पार्लर की आपने बात कही, अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो कम से कम महीने में एक बार तो पार्लर जाती ही हैं, लेकिन आज भारत में कई तरीके के ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। क्या आप अपने श्रोताओं को सुझाव देना चाहेंगी कि पार्लर चुनने से पहले इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें, ताकि आप पार्लर से कोई भी इन्फेक्शन ना उठा ले आएं?
1: मैं पार्लर के बारे में ऐसे कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, मैंने देखा है कि जो लोग पेडिक्योर करवाते हैं पार्लर में या मैनिक्योर करवाते हैं, मैंने वार्ड्स बहुत देखे हैं अच्छे से अच्छे पार्लर में, मैंने देखा है कि वो लोग वही टब यूज करते हैं जिसमें दूसरे लोग वायरल इन्फेक्शन के साथ आते हैं। और मैंने बहुत सारे मेल पेशेंट्स जो कि मेल सैलॉन्स जानना चाहते हैं

0: मैंने दाढ़ियों पे वार्ट्स बहुत देखे हैं बिकॉज वो लोग शेविंग कराते हैं तो जो उस्तरा होता है वो शायद कॉमन होता है, और मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, मैंने बड़े बड़े पार्लर के लोगों को, सैलॉन्स के लोगों को देखा है. तो मुझे लगता है एक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे क्लिनलीनेस रखी जा रही है, और जो ऐसी दवाइयाँ और पार्लर वाले अगर आपको दे रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बोलें कि इससे आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे और सुंदर हो जाओगे, है ना, तो वो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी नहीं होती है. उसके अंदर वो बहुत हार्ड केमिकल्स डाल रहे हैं जिसमें से स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा है, है ना, तो उसकी वजह से मैंने किडनी फेलियर और मैंने डेथ्स भी देखी हैं. आपकी पार्लर वाली ने आपको एक क्रीम दी गोरा होने के लिए और आप समझे उससे आपकी मृत्यु हो रही है, कैसा लगेगा. तो मुझे लगता है इस प्रकार की अनवेरीफाइड चीज़ें, कुछ भी जो बिना लेबल के आती हैं, बिना FDA अप्रूव्ड आती हैं, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गड़बड़ होते हुए देखा है बहुत सारे मरीजों के साथ. तो मुझे लगता है कुछ भी आप करो एक वेरीफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही करो, और पार्लर वालों से आप बस एक थोड़ा देखें कि उनका वैक्स कराने जा रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पे कितनी साफ सफाई है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना क्लीन है, और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज.
1: बिल्कुल. कोई और सुझाव आप आकाशवाणी के श्रोताओं को अपनी तरफ से देना चाहेंगी?
0: अल्टीमेटली जो आप खाते हैं वही आपके चेहरे पे और बालों पे और बाकी की बॉडी पे दिखता है. तो मुझे लगता है खान पान अभी बहुत अच्छा रखें, भीगे हुए बादाम कम से कम 5 से 10 बादाम रात में भिगाकर आप सुबह खाएं, अखरोट वॉलनट्स 3 से 4 वो भी भिगाएं अगले दिन खाएं, सीड्स जो कि मार्केट में आते हैं पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स या चिया सीड वाटर रात में भिगा के अगले दिन सुबह पिएं, तो मुझे लगता है स्किन और हेयर के लिए काफी फायदेमंद होता है वो.
1: त्योहारों का मौसम आने वाला है तो एक के बाद एक त्योहार आएंगे, और हम हर त्योहार में अच्छा दिखना चाहते हैं तो हम चेहरे पर मेकअप तो ज़रूर लगाएंगे, बालों में भी हम या तो स्ट्रेटनिंग करेंगे या हम हेयर सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि हमारे बालों को और त्वचा को नुकसान ना हो?
0: देखिए आपके अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा अगर मेकअप लगा रहे हो अपने चेहरे के ऊपर, और आप मतलब मुझे लगता है 2-3 घंटे से ज़्यादा मेकअप चेहरे पर नहीं होना चाहिए, बट अक्सर हम आते हैं रात में और हम इतने थक चुके होते हैं कि हमारे पास इतना समय भी नहीं होता हम अपना मुंह धोएं. मुझे लगता है अगर आप ढंग से मेकअप को पहले तो पूरी तरह से निकाले रात में, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करें, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर सोएं, है ना. तो मेकअप मुझे लगता है कि सभी लगाते हैं, किस लड़की को पसंद नहीं है मेकअप लगाना आज की तारीख में. मेकअप लगाएं बट उसको प्रॉपरली निकालें, और बालों में भी अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं जो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, तो आप मुझे लगता है पहले उसको लगाएं फिर स्ट्रेटनिंग करें. बट तब भी मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगानी चाहिए किसी भी प्रकार की हीट, ना ब्लो ड्रायर ना स्ट्रेटनर के थ्रू. वंस इन अ वाइल महीने में एक आध बार मुझे लगता है कि कर लें तो ठीक है, बट आप सोचिए मैं रोज स्ट्रेटनर लगाऊंगी तो अल्टीमेटली हीट किसी भी प्रकार की बालों को डैमेज ही करेगी. महीने में एक आध बार के लिए तो मैं भी मना नहीं करूंगी, बट आप थोड़ा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या सिलिकॉन बेस्ड जेल्स जो आते हैं उसको लगाएं, फिर बालों की स्ट्रेटनिंग या ब्लो ड्राई कराएं.
1: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं कि आपके ये सभी सुझाव हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के काम आएंगे. धन्यवाद.
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे त्वचा और बालों की देखभाल विषय पर भेंटवार्ता. आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से. और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की। श्रोताओं, ये एक ऐसी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित डिजिटल तकनीक है जो मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बीमारियों के उपचार, प्रबंधन और रोकथाम में मदद करती है, यानी मरीज के इलाज में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। श्रोताओं, ये तकनीक मधुमेह, अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी जैसी बीमारियों में दैनिक मार्गदर्शन देती है। ये व्यायाम, दवा खाने की याद दिलाना, बीमारी कितनी ठीक हो रही है जैसी कई सुविधाएं प्रदान करती हैं। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह से हम इस तकनीक का उपयोग करें और इस ऐप में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अपना लक्ष्य दर्ज करें। नियमित रूप से मिलने वाले निर्देशों का पालन करें, समय समय पर अपनी रिपोर्ट देखें और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का उद्देश्य डॉक्टर की जगह लेना नहीं, बल्कि डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार को अधिक प्रभावी बनाना है, क्योंकि जब तकनीक और सही इलाज साथ चलते हैं तो सफर भी खूबसूरत हो जाता है।

श्रोताओं, रोज की डाइट में अगर हम मखाने को शामिल करते हैं तो शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। मखाना एक बेहतरीन सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ पेट, दिल और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम और फाइबर ज्यादा होते हैं, जिससे पेट दर्द तक देर तक भरा रहता है। सुबह या शाम को 25 से 30 ग्राम मखाना कम घी या तेल में सेक कर खाना सेहत के लिए बेहतर होता है। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सब से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए नेहा जैन को। नमस्कार।

0: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए कुछ छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं।

लोक संगीत के कार्यक्रम के आखिर में एक बार पुनः सुनिए ध्रुवाराम मरकाम और साथियों की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत, ये है बारिश गीत।

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हो चुके हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ मीरा की इस रचना से।

चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए भजनों का आनंद आप ले रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में, और ये रचना है मीराबाई की।

0: साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: पानी की हर बूंद है अनमोल,
8: बहने ना दें इसे बेमोल।
7: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
8: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
9: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अप्रस्तुत फिल्म संगीत।

द डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत आप सुनने जा रहे हैं वरुण जैन, रोमी और अनुराग की आवाज़ों में। कौसर मुनीर ने इसे शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है अनुराग।

0: और इसी के साथ में फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नए कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को

वे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार सदैव देश के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विथ AI के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। IIT दिल्ली के सहयोग से संचालित इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्रीराम निजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परिसर को संस्कृत, वैदिक अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख शिक्षा एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक औसत से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा मुथुपांडी की सफलता से हर भारतीय गौरवान्वित है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक हाट का आयोजन किया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर संस्था स्तरीय काउंसलिंग के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर आगामी 12 अगस्त तक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी शाखाओं के प्रथम वर्ष में सीधा प्रवेश ले सकते हैं। और भोपाल मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 1-5 अगस्त तक 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थी

0: विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
5: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य

0: निशिकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच उड़ीसा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान

0: पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस नगमे को सुनने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, उन सभी के नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस पहले नगमे को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। ये हैं सेक्स्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। साथ में हैं अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से ये खत लिख भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से अगला खत आया है हरदेव मीका, बलविंदर बरीक, जैतेक बरीक और मीका बरीक का। बक्सर बिहार से ये चिट्ठी आई है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम और अक्रम अंसारी। साथ में हैं अल्ताफ अंसारी। हुमगांव बिहार से ये चिट्ठी लिख भेजी है डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश ने। सारिमपुर बक्सर से ये चिट्ठी लिख भेजी है आसमा खातून, राज एस डी अंसारी, महताब, आफताब और मिराज अंसारी ने। कमर कॉलोनी बड़वाह से

गाया हुआ एक गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, ये है बर्मन ने।

आपकी फरमाइश में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है नारायणपुर बलिया से। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। सपना संगीता रूट इंदौर से ये ख़त हमें लिख भेजा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकीश, साक्षी, मनन और तानिया ने। जयराज प्लॉट राजकोट से अगला ख़त लिख भेजा है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा,

मीना, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन नाना इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये अगली चिट्ठी लिख भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुस्तबा खान ने। साथ में हैं रऊफ भाई और शाहिद। गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में जिंदगी 50-50 फिल्म से। शब्बीर अहमद ने शब्द दिए हैं और धुन है अमजद नदीम की।

ये पैरोडी सॉन्ग हमने लिया था वारिस फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशरा भोसले ने इसे गाया था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। सुनना चाहा था ग्राम जसवाड़ी से दुर्गीश, नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाकसे ने, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप और राशि राजेश, प्रभाकर जोंघले ने साथ में हैं आरती। इन्होंने ये ख़त हमें लिख भेजा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से, बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत, लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने भी इसी खत को भेजा था हमें, और जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम ने इसी गीत को सुनना चाहा था। घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी लिख भेजी है संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन संप्रीत और हेमेंद्र ने, साथ में हैं सलमति पंचोलिया। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों का भेजा हुआ ये ख़त जो हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश और रमेश गौड। उपाध्याय नगर देवास से अगली चिट्ठी लिख भेजी है मुरारी लाल वर्मा मनीष और इनके साथियों ने। राजाराम नगर देवास से ही ये चिट्ठी लिख भेजी है राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन ने। देवास से ही हमारे कुछ और श्रोताओं के ये खत आए हैं जिनमें हैं नागू सिंह कुमावत, राजकुमार और अभिषेक कुमावत। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं जहर फिल्म से, आतिफ असलम ने इसे गाया है। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है रूप कुमार राठौर ने, और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक विथ एआई के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्री रामानुजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सभा समापन हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। आजकल का प्रसारण होगा 6:40 पर और प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, प्रसारण का समय रहेगा रात्रि 10:00 से। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में हमारी सांध्यकालीन सभाओं में सुन पाएंगे। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेब पर आप हमारी सभा से शाम 5:00 से पुनः जुड़ सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए, लोक संगीत कलाकार हैं ध्रुवाराम मरकाम और साथी, इनसे आप सुनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

और इसी भजन के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया हुआ यह गीत था। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था। आवाज़ थी किशोर कुमार की, फिल्म का नाम था आशा।

ये गीत हमने आपको सुनवाया है साहिल हाडा का गाया हुआ, गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म से इसे लिया था। सिद्धार्थ गरिमा का ये गीत था और संगीत था संजय लीला भंसाली का। और इस गीत से पहले हमने आपको सुनवाया था भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ का वो गीत जिसे संजय

कीजिएगा, विट्ठल भाई पटेल ने लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। और अब आ रहा है कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

ये गीत आप सुन रहे हैं भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर का गाया हुआ, किनारा फिल्म से हमने इसे लिया है। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर 29 जुलाई से 7 महीने तक का संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने बताया कि यह अभियान अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईशा ने महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और मनु ने कांस्य पदक जीतकर असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से DTH के ऑडियो चैनल पर। 4 बज चुके हैं। अब पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम आईना।

0: करता है कि वह हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। तो आइए समाअत फरमाइए मारूफ शायर जनाब फाजिल खान का मुंतखब कलाम उन्हीं की आवाज में।
1: एक गजल से मतला देखें और कुछ शेर यूं कहें कि हमारी आशिकी पर गौर करना, हमारी आशिकी पर गौर करना, बहुत कुछ सोच कर इग्नोर करना। हमारी आशिकी पर गौर करना, बहुत कुछ सोच कर इग्नोर करना। जवानी के दिनों में इश्क कर लो, जवानी के दिनों में इश्क कर लो, तुम इसके बाद में कुछ और करना। जवानी के दिनों में इश्क कर लो, तुम इसके बाद में कुछ और करना। ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, मेरी आदत नहीं थी शोर करना। ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, मेरी आदत नहीं थी शोर करना। मैं सबके सामने तुमको न देखूं, मैं सबके सामने तुमको न देखूं, तू सबके सामने इग्नोर करना। मैं सबके सामने तुझको न देखूं, तू सबके सामने इग्नोर करना। जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, कभी फुर्सत मिले तो गौर करना। जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, कभी फुर्सत मिले तो गौर करना। वो जरा सा इश्क करके देख पहले, जरा सा इश्क करके देख पहले, अगर अच्छा लगे तो और करना। जरा सा इश्क करके देख पहले, अगर अच्छा लगे तो और करना। खुदा के हाथ में है कामयाबी, खुदा के हाथ में है कामयाबी, हमें है कोशिशें पुरजोर करना। खुदा के हाथ में है कामयाबी, हमें है कोशिशें पुरजोर करना। और एक गज़ल से चंद शेर यूं भी कहे के हमारे साथ ये अक्सर हुआ है, हमारे साथ ये अक्सर हुआ है कि पहला वार ही दिल पर हुआ है। हमारे साथ ये अक्सर हुआ है कि पहला वार ही दिल पर हुआ है। बना वो दोस्त से हमदर्द मेरा, फिर उसके बाद में दिलबर हुआ है। बना वो दोस्त से हमदर्द मेरा, फिर उसके बाद में दिलबर हुआ है। वो किताबत का हुनर हाथों में पैदा, किताबत का हुनर हाथों में पैदा, तुम्हारा नाम लिख लिख कर हुआ है। किताबत का हुनर हाथों में पैदा, तुम्हारा नाम लिख लिख कर हुआ है। और शेर के बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, जो घर होते हुए बेघर हुआ है। बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, जो घर होते हुए बेघर हुआ है। वो आया आ गया आ ही गया अब, वो आया आ गया आ ही गया अब, हमारे साथ ये दिन भर हुआ है। वो आया आ गया आ ही गया अब, हमारे साथ ये दिन भर हुआ है। और ये शेर के मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, बड़ी मुश्किल से मेरा घर हुआ है। मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, बड़ी मुश्किल से मेरा घर हुआ है। और दोस्तों एक गज़ल से कुछ शेर यूं भी के उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है। उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है। और ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नज़र नहीं है ये सच नहीं है। ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नज़र नहीं है ये सच नहीं है। और तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है। तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है। और एक गज़ल से दो तीन शेर यूं भी कहे के अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो।

0: दुश्मने जहाँ पे पलटवार करो, प्यार करो, अपने लहजे को न तलवार करो, प्यार करो, दुश्मने जहाँ पे पलटवार करो, प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे, अपना ऐसा मियाँ किरदार करो, प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे, अपना ऐसा मियाँ किरदार करो, प्यार करो, तुम हो इंसान, मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, तुम हो इंसान, मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो, प्यार करो, तुम हो इंसान, मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो, प्यार करो। और एक गज़ल से कुछ ये के शेर के, हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, ये आफ्ताब मुसलसल सफ़र में रहता है, हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, ये आफ्ताब मुसलसल सफ़र में रहता है, वो समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है, समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफ़र में रहता है, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफ़र में रहता है। और एक गज़ल से कुछ शेर यूँ भी के, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके, वो सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके, सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके, वो तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके, तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके, वो कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके, कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके। और शेर आखिर के, लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, लौट सकता था बहारों का वो मौसम फिर से, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वो ही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। और एक गज़ल से कुछ शेर यूँ भी कहें कि, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, अजीब शख्स है फिरता है दर बदर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, अजीब शख्स है फिरता है दर बदर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी। और शेर आखिर, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: समीन, भी आपने जनाब फाजिल खान का खूबसूरत कलाम समाप्त फरमाया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी

उर्दू कार्यक्रम आईना का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारा अगला कार्यक्रम जो है संग्रहालय से। इसमें आप सुनेंगे कामिनी काय कांतारे की 12वीं कड़ी का प्रसारण। आइए सुनते हैं।

प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 12वां भाग। अब तक आपने सुना कि चंद्रसेन की अवंती में वैसिका से भेंट होती है। वो उसकी सादगी और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे बहन बना लेता है। चंद्रसेन आश्रम जाकर भेषज्ञ त्रिलोचन को वैसिका के बारे में विस्तार से बताता है। अब आगे

0: उज्जैनी से लौटा चंद्रसेन कुछ खिन्न था और कुछ प्रसन्न। खिन्न इसीलिए कि ठीक से उज्जैनी का दर्शन नहीं कर पाया। उसने देखा कि राजधानी में कहीं अवकाश ही नहीं है, जिसे देखो वही व्यस्त। कहीं धन पद वैभव के लिए प्रतियोगिता है, तो कहीं पेट को भरने की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य नट विट भाट बन गया है। सुरा और सुंदरी का ऐसा निर्बाध विनिमय उसकी कल्पना से बाहर था। महामात्य के व्यवहार से वो प्रसन्न था और वैसिका के बंधु होने से आत्मगर्वित। एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने पूछ ही लिया,
1: आर्य त्रिलोचन एक बात पूछनी है।
2: एक ही क्यों, दो तीन जितनी चाहे पूछिए, पर औषधि शोधन की गति मंद ना पड़े।
1: आपकी मुखाकृति वैसिका दीदी से बहुत साम्य रखती है।
2: कौन वैसिका?
1: बताया तो था आपको, वही जिन्हें मैंने उज्जैनी में अपनी दीदी माना है।
2: ओ हाँ, बताया तो था तुमने।
1: वे औचक मेरा मुंह देखती रही और फिर पूछा, तुम्हारे भेषज्ञ क्या दक्षिणत्य हैं?
2: फिर

0: तुमने क्या कहा?
1: मैंने कहा हमारे आश्रम में कोई किसी की कुल जाति आदि नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं जानता। किंतु उन्होंने आग्रह किया कि आपसे पूछूं कि क्या आप दक्षिण देश से हैं और कलाधर हैं? यदि वे भी हैं तो क्या आपके बाएं कपोल पर किसी घाव का चिन्ह है?
2: अरे आर्य, आपको क्या हुआ? आप स्वस्थ तो है ना आचार्य?
0: चंद्रसेन,
2: आचार्य
0: तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
2: आश्चर्य आचार्य, वैशिका दीदी ने भी आपकी वह पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
0: चंद्रसेन,
2: आचार्य
0: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
2: आचार्य क्यों? आचार्य
0: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
2: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
0: देखो मेरे बाएं कपोल पर क्षत्य का चिन्ह है।
2: अरे हाँ,
0: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
2: अच्छा,
0: चिन्ह रह गया।
2: हाँ,
0: मैं दक्षिणित्य हूँ।
2: अरे
0: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की जल यात्रा में मेरा सब कुछ छिन गया था।
2: क्या वैशिका दीदी ने ये सब क्यों पूछा?
0: गोदावरी में हमारी नाव पर दस्यु आक्रमण हुआ था, हमारे सेवकों की हत्या करके दस्यु ने मां की हत्या कर दी। मुझे गोदावरी में धकेल कर वो नौका का अपहरण करके ले गए। मैंने उन गिद्धों को मां की मृतदेह से आभूषण नोचते देखा है।
2: धैर्य रखिए,
0: मुझसे हतभागा कौन होगा? उस नौका पर मेरी सत्या दीदी थी। मुझे न जाने क्यों लगता है कि तुम्हारी वैशिका दीदी मेरी सत्या दीदी है। मैं घड़ी दो घड़ी में निकलता हूँ चंद्र।
2: आचार्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे वहां कई लोग पहचानते हैं। महामात्य, वैशिका दीदी, देवी वसुंधरा और स्यात महादेवी पिंगला भी। आपकी भेंट सुगम हो सकेगी।
0: नहीं, यहाँ तुम्हारे बिना सब कार्य रुक जाएगा।
2: लेकिन आचार्य,
0: मेरे पीछे तुम औषधि वितरण और सामान्य उपचार का दायित्व देखते रहना, मैं निकलता हूँ।
2: ठीक है आचार्य।

0: आचार्य त्रिलोचन उज्जैनी पहुंचते हैं। वो सीधे महालय पहुंचते हैं और प्रहरी को परिचय देते हैं।
1: मेरा नाम त्रिलोचन है, सेवाश्रम का भेषज्ञ हूँ। 3 सप्ताह पहले मेरे सहयोगी चंद्रसेन यहाँ अश्व नीलमणि को लेकर आए थे। मुझे देवी वैशिका से भेंट करनी है।
2: मान्यवर, राजमहालय में प्रवेश केवल महामात्य के अनुमति पत्र से ही संभव है। हम विवश हैं कि आपको प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूं सूचना थे कि वैशिका देवी कल ही महादेवी के संग किसी यात्रा पर जा चुकी हैं।
1: कब तक लौटेंगी?
2: महादेवी के यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी अमात्यों और आस्पदों को भी नहीं होती, और हम ठहरे साधारण सेवक। वह आज भी लौट सकती हैं और कल भी, या अठवारे पखवारे में भी। सब अनिश्चित है।
1: पर कहां से जानकारी मिलेगी?
2: मान्यवर, हमें क्षमा करें।
1: अच्छा, ये तो बता सकेंगे कि यहाँ एक चिकित्सक मृगांक दत्त रहते हैं। मेरे सहपाठी हैं, आप उनके आवास आदि की जानकारी दे सकेंगे?
2: जी जी, अवश्य मान्यवर। श्रीमान मृगांक दत्त उज्जैनी के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आप यहाँ से निकलकर दक्षिणी मार्ग लें, आगे एक त्रिपथ आएगा, वहाँ बाएं मुड़कर चलें। कुछ ही दूरी पर उनका आवास और चिकित्सालय है। आप किसी से भी पूछ लें, धन्वंतरी कुंज।
1: सचमुच दर्शनीय है ये महानगरी, कनक श्रृंगा उज्जैनी। वैभव और ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु संभवतः यह वास्तविक चित्र ना भी हो, कुछ ऐसा हो जो अदृश्य है। किसी ने कहा भी है कि हर वैभव के नीचे कोई हाहाकार दबा होता है। त्रिपथ पर चलते चलते

0: बंधु, मैंने आपसे मार्ग की जानकारी चाहिए।
1: आप तो बुरा मान गए। क्षमा करें, मैंने तो इसलिए पूछा था कि यदि आप औषधि या उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि धनवंतरी कुंज में केवल श्रेष्ठियों और श्रीमंतों के उपचार का स्थान है।
0: तो गंग दत्त निर्धन वंचितों का उपचार नहीं करते?
1: अरे, निर्धन वहां पहुंचेगा ही क्यों? उनका उपचार इतना व्यय साध्य है कि श्रमिक और कृषक उपचार के स्थान पर मृत्यु को वरण्य मान लेते हैं। अरे नहीं नहीं, भ्रम में ना पड़िएगा। और भ्रम में पड़े भी क्यों ना आप, बाहर से आए प्रतीत होते हैं। अरे राजधानी में भ्रम ना पाले जाए तो उसे राजधानी कौन कहेगा? और मुझे क्या करना, चार आवाज छोड़कर सीधे चले जाइए, धनवंतरी के कुंज में पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी वहां, रथ और शिविकाओं का रोग ग्रस्त संकुल पहचान लेंगे आप।
0: लगता है बंधु, तुम किसी कारणवश मृगांग से रूष्ट हो। कुछ बातें रोचक हैं तुम्हारी। तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है, कभी अवसर आए तो अवश्य।
1: मैं नहीं मिलूंगा, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। मैं चला।
0: चला गया। विचित्र जीव है वो, असंतुष्ट, संभवतः अपने आप से भी असंतुष्ट। ऐसे लोग भी होते हैं। भीड़ से भरा आवास आ गया, संभवतः मृगांक यहीं मिले।
2: अरे अरे, कहां घुसे चले जा रहे हो भाई?
0: मृगांक दत्त से मिलना है।
2: उपचार का समय समाप्त हुआ, कल प्रातः काल आना और अपना कर्मांक अंकित करवाना।
0: उपचार के लिए नहीं, भेंट के लिए आया हूं। सहपाठी मित्र हूं मृगांक का।
2: अन्यथा ना ले महोदय, मैं तो आज्ञा पालक अनुचर मात्र हूं, स्वामी के अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं है यहाँ।
0: और अनुमति कौन देगा? इन प्रवेश करने वाले लोगों को तुम रोक नहीं रहे, इनका ऐश्वर्य तुम्हारे कर्तव्य पालन में बाधक है, यही बात है ना? अस तुम मेरे आने की सूचना मृगांक को जाकर दो, या मैं वैसे ही प्रवेश करूं, तुम मुझे रोक ना पाओगे बंधु। हाँ, यदि मृगांक मिलना ना चाहें तो अलग बात है।
2: देव, आप इस कक्ष में जाकर विश्राम करें, मैं उनको खबर देता हूं।
3: त्रिलोचन अंदर कक्ष में जाकर ऊंचे स्वर में पूछते हैं,
0: श्रीमान मृगांक कहाँ है?
4: अरे दुष्ट त्रिलोचन, वर्षों से अता पता नहीं, आज आकाश से टपक पड़े अचानक। मैंने तो सोचा था कि कोई यक्षिणी तुम्हें उठाकर ले गई है। इधर बैठ। शुभांकर
5: जी,
4: तुम अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो और बाकी के रोगियों को देख लो, मैं अब अवकाश लूंगा
5: जी।
4: मेरा बिछड़ा हुआ मित्र युगों बाद मुझे मिला है।

0: त्रिलोचन, तुम आए हो तो कुछ दिन रुको भी। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे बल प्रयोगी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे अपशब्द तो मेरे लिए नए नहीं है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं उतना ही नैतिक हूँ जितना आवरण के लिए आवश्यक है।
1: जानता हूँ।
0: बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि स्मृतियों के पृष्ठ उलटूं और खोजूं कि कहाँ है मृगांक।
1: यह तुम कह रहे हो मृगांक? आश्चर्य है, तुमने तो 2 वर्षों की अवधि में ही ये सब वैभव, इतना सम्मान पा लिया है। तुम परम सुखी हो, तुम्हें कैसा क्लेश?
0: सभी बातें होंगी मित्र, तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ। बस मेरे लिए तुम्हारी आंखों में जो विरक्ति, जो व्यंग है, उसके संग थोड़ी सी प्रतीति मुझे मिल जाए। तुम मेरे अनन्य और एकमात्र मित्र हो त्रिलोचन, सहपाठी। संसार में हमने साथ साथ अनुभव के गवाक्ष खोले थे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? अच्छा ये तो बताओ कि उज्जैनी आने का तुम्हारा हेतु क्या है? इतना तो मैं जानता हूं कि महाकाल के दर्शन करने तो तुम आए नहीं, और

0: मेरे आवाज तक पहुंचने की कृपा की तो वो भी मैत्री की उमंग में नहीं हुई होगी। फिर भी तुम जो चाहो, भ्रमण, वास, विलास या मेरा उपहास, करते रहना स्वतंत्रता पूर्वक। यहाँ रहोगे तो देखोगे कि जीवन से मैंने बंधना तो सीख लिया है, तथापि मैं नीच नहीं हुआ हूँ।
1: निश्चय ही तुम्हारे पास आने में मेरा स्वार्थ है मृगांक। स्वार्थ ना होता तो उज्जैन आता ही क्यों? आकर भी संभव है कि तुमसे मिले बिना लौट जाता, पर यह मिलन भी अच्छा ही रहा। तुम्हारी जो छवि मेरे मन में बनी थी वो इस मिलन के बाद कुछ कुछ टूट रही है।
0: छवि तो एक मुखौटा है मित्र। मैं तुम्हें केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि अवंतिका राज्य धर्म और व्यापार का केंद्र है। तीनों यहाँ अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट स्तर पर विद्यमान है। यहाँ निकृष्ट को परिष्कृत करके उत्कृष्ट के समकक्ष खड़े कर देना ही कौशल समझा जाता है, जिसके लिए असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है मित्र। इसलिए अनित्य, असत्य, सत्याभास यहाँ के प्रभु वर्ग की जीवन शैली में आ गए हैं। महाकाल का घंटा और भी वेग से बजता है, प्रार्थना के स्वर ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं। ये अवंतिका है मित्र। लेकिन तुम्हारे लिए आश्रम ही उचित स्थान है। तुम्हें सही स्थान पर ले जाकर पटका है देव ने कि पट्टियां बदलते रहो और कुष्ठ रोगियों, उन्मादियों, लूले लगनों का उपचार करते रहो।
1: देखूंगा, तुम्हारी उज्जैनी भी देखूंगा। सांध कर्म से निवृत्त हो लूं, फिर जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। अपने आने का हेतु भी तो तुम्हें बताना है।

0: दोनों मित्र उज्जैनी की वीथियों में रथ पर सवार होकर घूम रहे हैं।
1: हम जा कहां रहे हैं मृगांक?
2: आए हो तो उज्जैनी का दर्शन भी कर लो मित्र, प्रारंभ महाकाल से।
1: आज स्नान नहीं कर पाया हूँ, वस्त्र भी मलिन है, शुचिता का ध्यान भी तो रखना होगा।
2: फिर शिप्रा के इन घाटों की शोभा देखो मित्र, देखो तटवर्ती स्तंभ दीप जल में यूं प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे एक समानांतर उच्च से आलोक प्रस्फुटित हो रहा हो। कितनी सुंदरियां दीप दान के लिए यहाँ पर पंक्ति वक्त खड़ी है, पता नहीं चलता कि दीप की दीप्ति उनके मुख पर है अथवा मुख से ही दीप्ति प्रकट हो रही है। ये उज्जैनी के श्रीमानों का घाट है, अभी कुछ देर में यहाँ रसिक समूह एकत्र होंगे, सुंदरियों में अपनी प्रेसी की कल्पना करेंगे और उन पर प्रणय पुष्प लीचेंगे। ये अवंती के शरदोत्सव का पूर्वाभ्यास है मित्र।
1: सचमुच मन भावन है ये दृश्य, किंतु मुझे सेवा आश्रम की स्मृति हो आई। वहां निर्धन विपन्न अशक्त रोगियों को छोड़कर आया हूँ, अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारी इस अवंती में।

0: मैंने तुम्हें कहा था अवंती केंद्रीय नगर है, राज वाणिक और धर्म तीनों का केंद्र, किंतु समय नहीं है किसी के पास त्रिलोचन। सब कुछ है, समय नहीं। तुम जिससे भेंट करना चाहो वह अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होता। यहाँ अपना समय साथ रखना होता है मित्र, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। महामात और महाभोग की नगरी है, यहाँ महाकाल हैं, यहाँ महामाया भी हैं, महाराज महारानी महामात्य महास्पद यही हैं, महासेन महाबलाधिकृत महाश्रेष्ठी महापंडित महानायिका और महाधूर्त और महालंपट भी, इनसे महानगर उज्जैनी की संरचना होती है मित्र। लो अब हम तुम्हारी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
1: उनका रथ अब श्रमिक वर्ग की नगरी से निकल रहा होता है।
0: सखा त्रिलोचन, ये भी उज्जैनी है किंतु ये कन

0: शंका नहीं है। यहाँ अनुचर, किंकर, दास कुलेक और हस्तिका बसते हैं। नदी तट पर जलते हुए चूल्हों की उठती हुई आग को देखते हो? वहाँ भुने हुए मांस की गंध से कुछ सुनने का प्रयास करो। अनेक कहानियां तुम सुन सकोगे। इस गंध में पसीना भी है और विवशता भी। मद की गंध और पथ के इधर उधर ग्राहक के साथ विनिमय के लिए प्रस्तुत रूप जीवाओं का सौंदर्य भी, यदि तुम उन्हें सुंदर कह सको तो।
1: ये मुझे कहां ले आए मृगांक? यहां तो सांस लेने में भी कष्ट है। ये तो नरक है, नरक।
0: मित्र, इसी नरक से चलकर मैं उस धनवंतरी कुंज तक पहुंचा हूँ। और त्रिलोचन, यहां मैं अब कभी वापस नहीं लौटना चाहता।

0: त्रिलोचन, राजधानी के दोनों चेहरे तुमने देख लिए, अब कहाँ चले बताओ?
1: आवासी लोग चले, मुझे और कुछ देखने की रुचि नहीं रही। मृगान, तुम्हारा आना जाना राजप्रासाद में तो होता ही होगा।
0: हाँ, उत्सवों आयोजनों के अवसर पर मिलता रहता है, चिकित्सा के लिए जाने का अवसर कभी नहीं मिला।
1: अच्छा, मुझे ये ज्ञात करके बताओ कि महारानी पिंगला कहाँ गई हैं और वो कब तक लौटेंगी?
0: ओ, महारानी से भेंट करना है, सीधी छलांग लगा रहे हो मित्र। वैसे मैंने सुना है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञात वास पर हैं और महारानी भी वहीं चली गई हैं। ज्ञात करने में कुछ समय तो लगेगा। मेरी एक रोगिणी है जिसका आना जाना अंतापुर में है, सुनते हैं कि वो महारानी के साथ चौसर खेलती है।
1: तो कल तक ज्ञात कर सकोगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु इस संबंध में जानकारी मेरे लिए तुरंत आवश्यक है।
0: कब तक ठहर सकते हो मित्र?
1: सूचना मिल जाने तक, किंतु 2-4 दिन बस।
0: मैं कल प्रयास करता हूँ महादेवी के संबंध में जानकारी जुटाने का। पूछा इसलिए कि राजा और राज परिवार के आसपास सया से एक रहस्य का वातावरण बुन दिया जाता है। सामान्य चीजें भी रहस्य में लपेट दी जाती हैं और अत्यंत गोपनीय विषय जानबूझकर प्रचारित किए जाते हैं। वैसे सुना है अवंती राज परिवार के रहस्य ठीक ठीक बस 3 ही व्यक्ति जानते हैं।
1: कौन है वो?
0: महामात्य पूर्णरथ, अंतेवास का कंचुकी प्रमुख और पिछले वर्ष से चर्चा में आई एक दासी। कहा जाता है कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है वो। राजा भर्तृहरि, रानी प्रिंगला और महामात उसकी सलाह का सम्मान करते हैं। उस दासी का नाम है वयसिका।
1: तुमने वयसिका को देखा है मृगांक?
0: सार्वजनिक उत्सवों में दासियों को प्रायः अलग ही रखा जाता है। मैंने उसके कारण पर बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कुछ दासियां अपनी स्वामिनियों से अधिक सुदर्शना और सुसंस्कृत होती हैं। अहम टूटता होगा उनका। वैसे मित्र, मैंने दूर से वयस्का को देखा है, सुंदर है, वय भी कम है। मेरा आशा है अपनी स्वामिनी महारानी पिंगला से।
1: तुम मुझे वयस्का से ही मिलवा दो मृगान।
0: हाँ, ये अपेक्षाकृत सुगम होगा। लेकिन मित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो महारानी से या वयस्का से। तुमने मुझे कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा ठीक, मैं नहीं पूछूंगा।

दूसरे दिन मृगांक को ये सूचना मिल गई कि महारानी पिंगला किसी बड़े अनुष्ठान के लिए गुप्तवास में है। वैसिका भी उनके साथ ही गई है। वो दोनों कहाँ हैं ये बात चंपा भी नहीं जानती। केवल महामात्य पूर्ण रथ को उसका अनुमान है और राजा भर्तृहरि भी राजधानी में नहीं है। संभवतः वो भी अज्ञातवास पर कहीं निकल गए हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चेतना भारद्वाज, चंद्रसेन बद्रवास्ती, त्रिलोचन उबैदुल्ला खां, प्रहरी मनोज राजानी, व्यक्ति भागीरथ साहू, द्वारपाल वकार हुसैन और मृगांक बालेंद्र सिंह, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय से निकल जाते हैं। रानी पिंगला को राजगुरु देवश्री ध्यान लगाकर बताते हैं कि राजा दक्षिण दिशा में हैं, वाहन और अस्त्र के बिना। व्यथित होकर रानी पिंगला राजा की वापसी के लिए कठिन अनुष्ठान का निर्णय करती है। इस प्रसंग से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी काय कांतारे, इस रेडियो धारावाहिक की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। भोपाल को मंगलवार 28 जुलाई से नया रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। शहर के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। शाम 5 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर नियमित यात्री सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विथ AI के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर 29 जुलाई से 7 महीने तक का संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने बताया कि यह अभियान अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्यों को और आपकी सफलताओं को जोड़ता है। जो भी समय पर काम करने की आदत डाल लेता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, आज हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नया करें, कुछ नए करियर के साथ जीवन आगे बढ़ाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश पारंपरिक रूप से एक कृषि प्रधान देश रहा है। पहले लोग इस बात को नहीं समझते थे, वो खेती हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है ये नहीं समझते थे। पर अब धीरे धीरे सभी लोगों को ये समझ आ रहा है कि खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, और इस बारे में बात करेंगे और इसी के साथ जानेंगे निवेश के आधुनिक कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन अपने घर में उगी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं? जी हाँ, और ये होता है अर्बन फार्मिंग से। आगे इस गीत के बाद हम जानेंगे अर्बन फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स क्या है और कैसे आप आगे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अभी आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत, जब तक है जान से, नीति मोहन की आवाज़ में।

नीति मोहन और सूफी अशरफ की आवाज़ों में भी आपने गीत सुना जब तक है जान से, संगीतकार यार रहमान और गीतकार गुलजार। और इसके पहले हम बात कर रहे थे अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स की, तो आज हम समझेंगे कि अर्बन फार्मिंग क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है और इसमें कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि कई लोग आपके आसपास अपने घर में उगी सब्जियां और फल खाते हैं, यही फायदा है अर्बन फार्मिंग का। अर्बन फार्मिंग सीमित जगहों जैसे छतों, बालकनी या खाली पड़े इंडस्ट्रियल शेडों में सब्जियां और फल उगाने की प्रक्रिया है। और आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स की ये बिना किसी मिट्टी के केवल पोषक तत्वों से युक्त पानी यानी कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर में पौधे उगाने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें पौधों को सीधे आवश्यक खनिज और नाइट्रोजन जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व मिलते हैं और इसी के कारण अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स एक नई एग्री टेक्निक है। अब जानते हैं कि आप इससे अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आता है B2B सप्लाई, यानी कि शहरों में आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। जो सब्जियां आपके उपयोग में नहीं हैं उन्हें आप डायरेक्ट बेच सकते हैं। फिर है D2C माइक्रो ग्रीन्स एंड सैलेड किट्स, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक शहरी आबादी के लिए रेडिश, ब्रोकरी, बेजिल जैसी सब्जियों का आप बिजनेस कर सकते हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार भी प्रोत्साहन देती है और सब्सिडीज भी देती है। अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स में एक व्यावसायिक अवसर नहीं है बल्कि ये भारत के कृषि क्षेत्र को आधुनिक, आकर्षक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यदि देश के युवा आधुनिक तकनीक, सही बाजार समझ और सरकारी योजनाओं को समझेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो ये क्षेत्र न केवल युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा बल्कि शहरों के लिए स्वच्छ खाद्य आपूर्ति की गारंटी भी बनाएगा। और अगर बात करें एग्री स्टार्टअप की, तो एग्री स्टार्टअप में भारत के कई शहरों में युवाओं ने कई सफल स्टार्टअप्स खड़े किए हैं और ये कंपनियां ना केवल खुद सब्जियां उगा रही हैं बल्कि फ्रेंचाइजी और B2B मॉडल, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, उससे करोड़ों का बिजनेस भी कर रही हैं। कई युवाओं ने अपने घर की खाली छत यानी कि 500 से 1000 स्क्वायर फीट से शुरुआत करने के बाद किसी कैफ़े में, सुपरमार्केट में बिजनेस सप्लाई किया और वो महीने में 50,000 से 1,00,000 तक की कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स केवल एक आधुनिक प्रयोग नहीं बल्कि आने वाले समय में फूड रेवोल्यूशन का मुख्य स्तंभ बनने जा रहा है। जब भारत का युवा डिजिटल सोच और तकनीकी कौशल को कृषि से जोड़ता है तो कृषि एक प्रीमियम और आकर्षक करियर बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आपको कृषि में दिलचस्पी है तो आप इस नई तकनीक का उपयोग कर नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूल भुलैया से।

श्रेया घोषाल और एमजे श्री कुमार की आवाजों में अभी आपने गीत सुना भूल भुलैया से, संगीतकार प्रीतम और गीतकार समीर। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आप अर्बन फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स में अपना नया करियर शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के पारंपरिक तरीकों जैसे FD, सोना, प्रॉपर्टी के अलावा

आज के समय में तकनीक और डिजिटल फाइनेंस की मदद से निवेश के कई नए आधुनिक और स्मार्ट विकल्प सामने आए हैं। ये तरीके न केवल आसान हैं बल्कि इनमें कम रकम में शुरुआत की जा सकती है। और अब जानते हैं भारत में निवेश के प्रमुख आधुनिक तरीके। म्यूचुअल फंड्स या SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप हर महीने 100 या 500 रुपये जैसी छोटी रकम से भी अनुशासित निवेश शुरू कर सकते हैं। फिर है इंडेक्स फंड्स, एक पैसिव निवेश तरीका है जो सीधे सेंसेक्स या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। फिर आते हैं ETF, म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं लेकिन इन्हें शेयर बाज़ार यानी कि स्टॉक मार्केट जैसे शेयरों की तरह दिन के किसी भी दिन खरीदा या बेचा जा सकता है। फिर है डिजिटल गोल्ड जो आजकल बहुत प्रमुख है, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सेक्टर इंडेक्स ETF। ये सभी छोटे छोटे निवेश आप कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, समय सीमा, जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ही निवेश में प्रवेश करें। निवेश कोई एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अनुशासित आदत यानी कि डिसिप्लिन हैबिट है। आप जितनी कम उम्र में और जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत करेंगे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही अधिक मिलेगा। सही योजना, सही समय और धैर्य के साथ किया गया निवेश आपको वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। तो अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो ये सारे विकल्प चुन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि निवेश करते वक्त सभी दस्तावेज, सभी रूल्स अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर निवेश के अपने अपने रूल्स होते हैं, जोखिम होते हैं, उनका ध्यान रखें और समझदारी से निवेश करें। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दम लगा के हईशा से मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

दोस्तों अभी अपने सुंदर सा गीत सुना मोनाली ठाकुर की आवाज में, संगीतकार अनु मलिक और गीतकार वरुण ग्रोवर। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ने टेक्नीशियन पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों की संख्या है 6557 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in यानी कि indianrailwsrailway.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में।

अरिजीत सिंह की आवाज में यह आखिरी गीत संगीतकार प्रीतम और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त सानिया आचार्य लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनवाते हैं दिल तेरा आशिक फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है जब तक है जान फिल्म से। आवाजें श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की है, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत ए आर रहमान का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में साधना सरगम और मनहर की आवाजों में है। गीत इंदिवर ने लिखा है और फिल्म का नाम है जाबाज।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन बनाई है उत्तम सिंह ने और फिल्म का नाम है दुश्मन।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा ये गीत सुना। संगीत उत्तम सिंह का था और फिल्म थी दुश्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 हुए हैं। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
7: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। भोपाल को मंगलवार 28 जुलाई से नया रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। शहर के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। शाम 5 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर नियमित यात्री सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विथ AI के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया

0: ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला

0: और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं?
0: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
0: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पोध का अर्थ होता है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीत में प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ, देखिए, रखो, देखिए, चलो, मुझे छोड़ दो। हाथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़।
5: तुम भी उतारो,
4: मेरी अंगूठी ले लो, मुझे छोड़।

0: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
1: नाथ,
2: महात्मा,
1: प्रभु,
2: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
1: वहाँ अंगुलीमाल है।
3: हाँ प्रभु।
1: वो बहुत बड़ा डाकू है।
4: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
1: ना जाएं।
5: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
3: ना जाएं प्रभु।
6: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: ठीक है।

0: उनको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री

0: अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।

0: जी, उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
0: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
0: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और फैजान के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 6:30 और 20 सेकंड हुए हैं।

कुमार सानू के साथ साधना सरगम की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हमने लिया था दम लगा के हाइशा फिल्म से। फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश आपकी नजर हम करने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र फिल्म से। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत प्रीतम का है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसकी धुन बनाई थी प्रीतम ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता जनार्दन को संबोधित किए जाने वाला मन की बात कार्यक्रम भारतीय जनमानस के साथ संवाद स्थापित करने का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक माध्यम बन चुका है। अब तक इस लोकप्रिय कार्यक्रम के 136 एपिसोड सफलतापूर्वक प्रसारित किए जा चुके हैं, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। ये केवल एक रेडियो कार्यक्रम में प्रशासनिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में बसे आम नागरिकों के पुरुषार्थ, समर्पण और जिजीविषा को सम्मानित करने वाला एक ऐसा जीवंत मंच है जो सीधा मन से मन को जोड़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की जनता जनार्दन के मन की बात करते हैं, उनके अनुभवों, उपलब्धियों, विचारों को संपूर्ण राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। मन की बात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर उस व्यक्ति का सहर्ष उल्लेख होता है जो किसी न किसी रूप में देश की प्रगति और समाज कल्याण में अपना मौन योगदान दे रहा है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, श्रम प्रबंधन, समाज सेवा हो या फिर महान बलिदान। इन सभी विधाओं के माध्यम से निस्वार्थ भाव से समाज का भला करने वाली अनगिनत विभूतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के पटल पर उभर कर सामने आई। प्रधानमंत्री के द्वारा जब ऐसे असाधारण कार्य करने वाले साधारण लोगों का उल्लेख किया जाता है तो वे देखते ही देखते उल्लेखित लोग आम से बेहद खास बन जाते हैं। ये कार्यक्रम उन दूर दराज के क्षेत्रों और लोगों तक भी पहुंचा है जहां संभवतः शासन और प्रशासन की सामान्य पहुंच कभी नहीं हो पाती थी। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ने जिन कर्मचारियों के नाम उल्लेख किया उनमें से अनेक गुमनाम और निष्ठावान विभूतियों को बाद में महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पद्म पुरस्कारों और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक उद्बोधन में एक दूरदर्शी विजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये विजन देश के समग्र विकास, उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, सनातन संस्कृति और प्रत्येक नागरिक के दायित्व बोध से गहरे तक जुड़ा हुआ है। मन की बात प्रधानमंत्री को देश के अंतिम व्यक्ति से सीधे भावनात्मक रूप से कनेक्ट करती है। यही कारण है कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग उत्सुकता, श्रद्धा और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। अब दूर दराज के गाँवों से भी लोग अपने मन की बात सीधे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि प्रधान सेवक मन की बात के अगले एपिसोड में उसे शामिल करेंगे, और ऐसा होता भी है। जनता जनार्दन द्वारा भेजी गई छोटी से छोटी बात तब अवश्य उनके उद्बोधन का हिस्सा बनती है जब श्री मोदी को लगता है कि इससे व्यक्ति, समाज या देश का भला होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षाओं के कठिन समय में बच्चों से अभिभावक की तरह संवाद करते हैं। परीक्षा पे चर्चा और मन की बात के माध्यम से वे विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। मन की बात की लोकप्रियता और प्रभाव का एक अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां इस कार्यक्रम ने कई नए वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश में मन की बात को केंद्र में रखकर लगातार 100 घंटे तक चलने वाला एक अभूतपूर्व विशाल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दिन रात अनवरत चले इस 100 घंटे के मोहा आयोजन में 100 अलग अलग विद्वान वक्ताओं ने 100 विभिन्न राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की विशिष्टता ये भी रही कि इसके प्रत्येक सत्र में कम से कम 100 नए श्रोता अनिवार्य रूप से शामिल हुए, जबकि पूरे आयोजन के दौरान जुड़ने वाले कुल लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। संक्षेप में कहा जाए तो मन की बात महज एक प्रसारण नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प, सामूहिक शक्ति, राष्ट्र चेतना और सकारात्मकता का एक महाउत्सव बन चुका है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में हम मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे के श्रेष्ठ प्रयासों की सराहना करते हैं और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं तो भारत की प्रगति की राह में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राणा शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है पन्ना जिले से, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत केवल खुले में शौच से मुक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिले में अपशिष्ट प्रबंधन को न केवल स्वच्छता का साधन बनाया गया है बल्कि इसे पंचायतों की आय अर्जन से भी जोड़ा गया है। पेश है पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट।
1: पन्ना जिले में स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण के तहत केवल खुले में शौच से मुक्ति ODF ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिले में अवशिष्ट प्रबंधन को न केवल स्वच्छता का साधन बनाया गया है बल्कि इसे पंचायतों की आय अर्जन से भी जोड़ा गया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर का मॉडल है, जिसने पूरे प्रदेश में सर्वोच्च राजस्व अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पन्ना दौरे के दौरान ग्राम पंचायत शाहनगर सरपंच मनोज जैन को पन्ना में सम्मानित किया। शाहनगर पंचायत में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक निस्तारण और जैविक खाद निर्माण में उपयोग किया जाता है। साथ ही बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन झाड़ू और डस्टबिन प्रणाली लागू की गई है। वहीं अवशिष्ट के पुनर्चक्रण और बेहतर पंचायत कर प्रबंधन के माध्यम से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आय अर्जित करने वाली पंचायत बनी। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर ने यह साबित कर दिया है कि सही प्रबंधन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कचरा प्रबंधन को एक लाभदायक मॉडल में बदला जा सकता है। पन्ना जिले में ग्रामीण स्वच्छता अब केवल शौचालयों के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि कचरा प्रबंधन को कचरे से कंचन वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पर संचालित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
0: हमारी दूसरी खबर है रायसेन से, जहां जिले को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने और युवाओं को एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के लिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत महेश्वरी।
2: रायसेन जिले को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने और युवाओं को एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रायसेन जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रायसेन पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशाल एवं भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं एवं पुलिस कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में प्रेरक नारों और स्लोगन लिखी तख्तियां थामे विद्यार्थियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आम जनमानस को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांची विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। वहीं जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में भी लगातार विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और युवाओं को नशे के लत से दूर रखकर एक स्वस्थ व नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। रायसेन SP आशुतोष गुप्ता ने बताया कि
3: हर प्रकार की जो नशा है वो जो है वो विनाश का कारण बनता है। उससे दूर रहें, स्वयं भी दूर रहें और अपने परिवार को भी इस नशे से दूर करें। आगामी 15 दिवस में हर एक थाना स्तर पर जो है जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल कॉलेजेस और अलग अलग जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जाकर के कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इसके संबंध में जागरूक किया जाए।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत महेश्वरी।
0: हमारी अगली खबर है मंदसौर जिले से, जहां नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाकर विभिन्न माध्यमों से आमजन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा।
4: मंदसौर जिले में नशे के विरुद्ध नशे से दूरी है जरूरी 2.0 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंदसौर पुलिस लाइन में SP विनोद मीणा ने इसका शुभारंभ किया। नशे से दूरी है जरूरी विशेष अभियान के तहत जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों सहित स्कूली विद्यार्थियों NCC कैडेट

0: ग्राम व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य सामाजिक संस्थाओं और आम जन के द्वारा नशे के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता रैली और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 दिवसीय इस अभियान में जिले के सभी थानों के पुलिस कर्मचारियों द्वारा गांव में चौपाल, रैली, सोशल प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से आम जन को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। मंदसौर SP विनोद कुमार मीणा ने बताया कि
1: देखिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यह जन जागृति अभियान नशे के विरुद्ध लगातार पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ पे लगातार अवेयरनेस ड्राइव की जा रही है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारा उद्देश्य स्कूल कॉलेजेस के लोगों से जुड़ना, साथ ही साथ गांव में जाकर गांव वालों को शिक्षित करना, साथ ही साथ शहर में लोगों को शिक्षित करना, साथ ही साथ हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के वीडियोज भी बनाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सोशल मीडिया के अंदर उनकी रीच करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचे। तो कुल मिला के हमारा यही प्रयास है कि जो नशे के दुष्परिणाम है, खास करके जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जैसे MDMA, MD, ब्राउन शुगर इत्यादि जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उसका नशा कोई भी व्यक्ति ना करे, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर देखता है कि अन्य व्यक्ति इसका नशा कर रहा है तो उसे भी रोके और टोके।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से दीपक शर्मा।
2: हमारी अगली खबर है मंडला से, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में 14 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों को बाघों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे।
3: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी क्रम में कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला द्वारा 14 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों को बाघों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान कान्हा प्रबंधन द्वारा बफर क्षेत्र के विद्यालयों के साथ साथ मंडला नगर के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में बाघ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। PPT प्रस्तुतिकरण चित्रों और वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि बाघ स्वस्थ जंगलों और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। साथ ही विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सहायक संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व आशीष पांडे ने बताया कि 25 जुलाई तक अभियान के अंतर्गत 40 से अधिक बाघ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 4000 से अधिक विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। विशेष पहल के रूप में विद्यार्थियों से बाघ को पत्र भी लिखवाए जा रहे हैं, जिनमें वे अपने विचार, भावनाएं और वन जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना है। अभियान में ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए चरवाहा सम्मेलन, कान्हा मित्र दल की बैठकें तथा विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंडला नगर में जन जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक आशीष पांडे ने बताया कि
4: विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य आम जनता में बाघ जो वन्य जीव है उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, और इसी का प्रयास कान्हा टाइगर रिजर्व कर रहा है। दिनांक 14 जुलाई 2026 से ये हम लोगों ने जन जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। इसी क्रम में विद्यालयों में जाकर बाघ संवाद कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 40 विद्यालयों में 4000 से अधिक छात्रों के मध्य पहुंचकर बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ इको विकास समितियां हैं, उन इको विकास समितियों में पहुंच करके हम लोग भगवा संगत के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं खंडवा जिले की तरफ, जहां पुलिस विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
5: भारत को वर्ष 2030 तक नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ खंडवा जिले में आगामी 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, आबकारी, वन एवं न्याय संस्थाएं सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से अनेक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में नशा मुक्ति शपथ नुक्कड़

0: नाटक, जनसंवाद, जागरूकता रैली, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता, लघु फिल्म प्रदर्शन तथा अन्य जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन ने बताया कि अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों तथा आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रम में भाग लेकर नशे से दूरी है जरूरी का संदेश जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
1: हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर से, जहां जिले की लगभग 450 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन।
2: मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे बसे नरसिंहपुर जिले की 450 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक व अजैविक कचरे के संग्रहण की विशेष इंतजामात हैं, वहीं जैविक कचरे के संग्रहण के लिए कंपोस्ट पिट भी बनाए गए हैं। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन में जिले में चार प्रकार के कचरों को संग्रहण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर के अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश।
3: ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक और अजैविक प्रकार के कचरों को कलेक्ट करना है, उसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है। जैविक कचरा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, घास और इस तरीके की जैविक चीजों का होता है, जो शायद सबसे बड़ी मात्रा में होता होगा, 80% के आसपास। उसके लिए कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं व्यापक पैमाने पे, और अभी भी ऐसे लक्ष्य किए गए हैं जिन जगहों पे हमारे कम्युनिटी एरियाज में कंपोस्ट की जरूरत होगी वो हम लोग कर रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को इस आशय की समझाइश दी जा रही है कि वो अपने कचरे की मात्रा के अनुसार वो कंपोस्ट पिट का स्वयं भी सृजन करें। जहां तक सूखे अजैविक कचरे की बात हो रही है, जो सबसे बड़ी एक चुनौती है, जिसमें पनी, प्लास्टिक, रेक्सिन, कांच जैसी चीजें आती हैं, उनको भी रोकने के लिए क्लस्टर लेवल पे अप्रोच किए जा रहे हैं। जिले में कुल 77 ऐसे सेग्रीगेशन सेट बने हुए हैं जहां पे कि इस तरीके का कचरा कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी आवश्यकता अनुसार 10 वर्ग फीट से लेके 1 एकड़ तक की भूमि को चिन्हित किया गया है तथा उसमें इस तरीके का जैविक कचरा को इकट्ठा किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2: इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण से लेकर ग्राम वासियों को भी कचरे के निष्पादन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
1: हमारी अगली खबर है खरगोन से, जहां जिले की पहचान बन चुकी लाल मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: खरगोन जिले के लिए यह गर्व और खुशी की बात है कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। करीब 50,000 हेक्टेयर में होने वाली मिर्च की खेती और बेड़िया की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी को इस उपलब्धि से नई पहचान मिलने की उम्मीद है। GI टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर दाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार पहले ही एक जिला एक उत्पाद योजना में खरगोन की लाल मिर्च का चयन कर चुकी है।
5: हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री, खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
6: निश्चित रूप से खरगोन जिले में जो मिर्ची का उत्पादन है बड़े पैमाने पर होता है, इसको GI टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के

0: दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: लीजिए अब सुनिए हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में 7:21 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा अनुप्रसारित की जाएगी रात 8:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से 8:15 पर पुनः जुड़कर सुनिए सुर्खियों में। फिल्म संगीत रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:30 पर रिले करेंगे पब्लिक स्पीक। रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे जरीन शर्मा का सरोद वादन राग जोग में। ये थी जानकारी हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की और अब सुनते हैं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:53 पर। पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम सुरुमई सवेरा सुनिएगा 8:30 पर और गीत सागर 10:05 पर। पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में चारुलता रथ के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। 9:30 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम शब्द सागर। जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रख्यात कवि, आलोचक, कला समीक्षक तथा अनुवादक श्री प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत। जिले की चिट्ठी का नियत समय है सुबह 10:00 का। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुनवाया जाएगा राग भैरव में ख्याल गायन। कलाकार होंगे आसकरण शर्मा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आरंभ करेंगे 11:00 से। कल आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर के सभा में आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा दिन में 12:00 और 2:30 पर। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 13वीं कड़ी। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 होगा फिल्म संगीत। सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से। 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत 5:33 पर और रात 8:30 पर और चित्रपट संगीत 6:30 पर। शाम 6:00 होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा रात 8:00, 8:15 पर सुर्खियों में। उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुन सकते हैं कल रात 9:30 पर और रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई रिकॉर्डिंग की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। यह जानकारी हमारी इस सभा के शेष तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए।

0: बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा से 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भोपाल में नवनिर्मित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में किसानों को खेती के लिए दिन के समय में भी बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
1: 1000 की राशि डाली, ये हमारे किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में और भी ऐसी योजना बनाएंगे। अभी तो किसानों को रात में बिजली मिलती है। हमारा प्रयास है इसी बारिश के सीजन के बाद किसानों को दिन में बिजली देंगे, दिन में जोरदार ताली बजा, रात की बिजली की झंझट खत्म।
0: मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन स्थापित करने और मुंडी खंडवा मार्ग के निर्माण के लिए 15 सितंबर से पहले टेंडर जारी करने की भी घोषणा की। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। आरोपियों को जिला जेल से वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद स्टेशन से यात्री रेल सेवाओं का नियमित संचालन शुरू होगा। इंदौर रूट की प्रमुख ट्रेनों का संचालन इसी स्टेशन से होगा और मालवा एक्सप्रेस तथा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव भी यही होगा। आज सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि इससे राजधानी के

0: रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और लाखों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत प्रदेश में राज्य स्तरीय समिति ने NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को बिना भौतिक निरीक्षण के योजना से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। इससे संबद्धता प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी तथा हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से मिल सकेंगी। इस निर्णय के तहत सुयश अस्पताल इंदौर और चित्रकूट अस्पताल जबलपुर को योजना से संबद्ध किया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के विस्तार और उन्नयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफारी को विश्व स्तरीय वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक वन्य जीव सुविधाओं, संरक्षण प्रजनन केंद्रों और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक औसत से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ISSF शूटिंग विश्व कप 2026 की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह के स्वर्ण और मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है तथा इससे देश का गौरव बढ़ा है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ मिलकर प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को एक पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया और बनखेड़ी तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में नारबाई प्रबंधन और फसल बीमा जागरूकता कार्यक्रम का समापन हो गया। रतलाम के प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल गुलाब चक्कर पर कल श्रीहरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल में युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, होटल और कैटरिंग सेक्टर में रोजगार से जोड़ने के लिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ग्वालियर स्थित जिला पंचायत सभागार में आज राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। गुना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में CM हेल्पलाइन प्रकरणों के त्वरित निराकरण और अनुकंपा नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिए और रायसेन जिले के सांची में शासकीय सांडीपनी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे।
0: पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया लोग कहते हैं कि जब बारिश होती है तो इसके पानी से अपन को जो है अपनी धरती को सहेजने आउत है, और यही जो जल है भूमिगत करवे की अगर अपन ने व्यवस्था कर ली तो समझो अपनी धरती के लाने एक तरीके से अपन ने वरदान होगा, क्योंकि जो पानी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत होगा तो हमारे भूमि का जल स्तर है वो बढ़ेगा, और हमारी खेती के लाने और हमारी आवश्यकताओं के लाने इसी से जो है हमारी पूर्ति होगी। क्योंकि आप सभी जानते ही हो कि जो अपनी पृथ्वी है उस पर बहुत ही कम मात्रा में ऐसा पानी है जो पीने योग्य है उपयोग के लिए। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे जल स्रोत हैं उनको सुरक्षित रखें, सफाई से उनका उपयोग करें, और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की गंदगी उनमें ना फैले। तो भैया अपन इन बातों को ध्यान रख के ही जो है बारिश के जल को भी अपन सहेज सकते हैं। अब देखो बहुत आषाढ़ पूर्व भी तो जा रहा है और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश ना के बराबर हुई है, तो कछु क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि खेती की जो है सबसे ज़्यादा बड़ी जो ज़रूरत होती है पानी होते है, और पानी ही सही से अपन को ना मिले तो भैया अपन खेती सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें। इसके संगे संगे जो अपने पशु हैं और भी अपने घर के काम काजों के लिए और विभिन्न अपनी दिनचर्या के लाने भी अपन को पानी की ज़रूरत होती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी का जो है सही तरीके से उपयोग करें और जो गंदा पानी है उसका उपयोग से बचें। क्योंकि जैसे बारिश का मौसम आता है तो अपन देखते हैं ना कि कई प्रकार की जो बीमारियां हैं पानी के माध्यम से भी होने को खतरा रहता है। तो अपन को साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी को उपयोग करने हैं और मौसम को देखत भय अपनों स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं। सो भैया देखो आज है चौपाल में लोक मातरी को देना, और ई दिना अपने जो भैया बहन हैं अपनी फरमाइश भेजे थे कि कौन से लोकगीत उन्हें पसंद आओ थे, कार्यक्रम कैसे लगत है। तो कायना अब बढ़त है लोक मातरी की तरफ और सुनत है पहली फरमाइश। जब फरमाइश आई है दमोह से लिखवे वाले भैया बहन हैं शालिनी, माधुरी, नैना देवी और रति बहन। इनने फरमाइश करी है कि तारा मिश्रा के स्वर में हमें लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं गणेश वंदना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भैया देखो, कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ राह बनाई लेते हैं, और ऐसे ही काम जो है अपने सभी भैया बहन कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वे अपने सूझबूझ से बाय को निदान निकालें। अब देखो कितनी छोटी सी बात होती है कि जो ऊर्जा के कई वैकल्पिक स्रोत हैं जिनको अपन जो है उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्रोत हैं जो कि अपन रोज ही में कहे जाए तो उपयोग कर

थे। अब देखो खाना भी बनाओ थे, पेट्रोलियम पदार्थों से जो अपने वाहन चला थे उनको भी उपयोग कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की जो खनिज संपदा है उनको भी अपन उपयोग में लाउ थे। लेकिन भैया कहो जाते कि जो प्रकृति ने अपन को दव है इनको तैयार हुए में हजारों वर्ष लग जाऊ थे, और लेकिन अगर अपन खर्चा की बात करें तो तना समय लगा थे इनको खर्च करे हुए में। और ऐसे में यदि अपन लगातार इनको उपयोग करत रहे और अपन रुके नहीं, संभले नहीं, तो वह दिन दूर नहीं है जब ये समाप्त हो जाएं। तो भैया थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर अपन कामकाज करत हैं और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनको अपनाउत हैं, तो निश्चित तौर पे हम इनको अधिक समय के लाने संरक्षित कर सकते हैं। अब देखो कई ऐसे वैकल्पिक स्रोत हैं जिनको अपन उपयोग में ला सकते हैं। अब देखो अपने सभी के घर में ढोर बछेरू तो होते ही होते हैं, जिनसे अपन को खेती के लाने जो है अच्छी प्रकार की जो उर्वरक होते हैं वह भी मिलते हैं। लेकिन भैयारों अगर अपन बायोगैस संयंत्र को लगवाउत हैं और उसको उपयोग करत हैं तो अपन को रसोई के लाने गैस भी मिलत है, बिजली की भी व्यवस्था हो जाऊत है, और इससे जो अवशेष बचते हैं उससे जो है अपन बेहतर जो है खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इससे भैया जो है सही तरीके से कहो जाए तो जैविक जो पदार्थ हैं उनको निपटारा भी हो सकता है और अपन के लाने अच्छो एक ईंधन भी मिल सकता है। तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि जो भी अपने वैकल्पिक स्रोत हैं उनको अपन उपयोग में लाएं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिनको अपन उपयोग में ला सकते हैं। तो भैया अपनी बातें तो और भी चलें, नए नए स्रोतों के बारे में जानें जिनको अपन सरलता से लगा सकते हैं। उससे पहले सुनत हैं अगला लोकगीत जिसकी फरमाइश करी है मनोज, सुरेश, मुकेश और मंजू देवी ने और उटीला से, और इन्हें साथ में लिखी है कि जो कार्यक्रम के माध्यम से लोग गीत सुनवाए जाऊत हैं इन्हें बहुत ही नौनी लगत हैं और ये काम काज करत भी ये उन्हें दोहराऊत हैं। तो अब सुनत हैं इनकी फरमाइश पे वीना सोनी के स्वर में लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

भैया देखो, अपन और जब भी कछु काम काज की ठान लें तो ज़रूरी होता है कि हम पूरे तरीके से बाइक की जानकारी रखें ताकि अपन सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। और अब जैसे अपन बात कर रहे थे ऊर्जा संरक्षण की, ये सिर्फ अपने लाने ही भैया और ज़रूरी नहीं है। अगर अपन चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो भी हमारे वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करते हैं हम, वो भी और जो ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो कि सीमित मात्रा में सुरक्षित रहें, तो आज के समय में ज़रूरी है कि हम इनका सही तरीके से उपयोग करें और छोटी छोटी आदत को अपनाकर हम इनको सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब देखो कितनी छोटी सी बात होती है कि अपन एक कमरा से दूसरे कमरा में जा रहे हैं तो अपने घर की जो है लाइट और पंखे बंद कर दें। इसी प्रकार से अब देखो घर घर में अपन देखते हैं फ्रिज भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपन फ्रिज से जो भी चीज़ें निकाला थे उनको सीधे ही गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। अगर थोड़े से सब्र के साथ अगर अपन काम करें, उसको सामान्य तापमान पर होने का इंतज़ार करें, फिर उसको गर्म करें, तो कई मात्रा में जो गैस है अपनी उसको भी अपन बचा सकते हैं। इसके साथ जो अपने वाहन हैं जिनका अपन रोज़ ही नियमित रूप से उपयोग करते रहते हैं, तो उनकी जो देख रेख की ज़रूरत होती है वह नियमित रूप से करते रहें। और जहाँ तक हो सके तो सार्वजनिक जो साधन है उनका उपयोग करके भी हम वाहनों की संख्या भी कम कर सकते हैं, भीड़भाड़ से भी बच सकते हैं और पेट्रोलियम पदार्थों की बचत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर के आसपास भी अपन को जैसे कहूँ जाने आने हैं तो कोई वाहन का उपयोग ना करके टहलत भए पैदल ही चले जाएँ, तो इससे क्या होते अपने जो पैर हैं उनकी मसल्स भी मजबूत होती हैं, साथ ही साथ टहलने से हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और थोड़ा बहुत पेट्रोलियम पदार्थ की बचत भी हो जाती है। और जब अपन चलत चलत अपने अड़ोसी पड़ोसी और लोगों से बातचीत करते हैं तो प्रेम भाव सोई अलग बढ़त है, और ऐसे ही प्रेम भाव अपन को बढ़ा के मिल के जो है पेट्रोलियम पदार्थ हैं या फिर ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं उनको अपन को बचाने हैं। तो भैया रो आप जाना तो कि जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है उसे सूरज बोलते हैं।

इसकी फरमाइश आई है उटीला से। लिखने वाले भैया बहन हैं सोनू, रंजीता, मुक्की और मीना देवी। इनने फरमाइश करी है कि हमें गोविंद नाथ त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ भैया बहनों सुनते हैं।

0: बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया देखो, अपन अगर कोनो भी काम करने की ठानत है तो वाई के साथ अपन को लगातार जो है परिश्रम भी करने आउत है, और सही दिशा में अगर करोगे परिश्रम हमेशा आगे बढ़ाउत है। अब चाहे अपन खेती बाड़ी की बात करें या फिर अपने पशुपालन की या कोनो और व्यवसाय की, अगर अपन चाह रहे हैं कि अपन सही तरीके से काम काज अच्छे तरीके से अपन को लाभ मिले, तो अपन को सही तरीके से प्रशिक्षण लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर अपन प्रशिक्षित हैं, उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी रखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार देखो जाता है कि अपन सोचा था कि अपन नए काम की शुरुआत करें और अपन काम काज शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर अपन ने पहले से तैयारी नहीं करी है, पूरी जानकारी नहीं रखी है, बाज़ार में किस प्रकार से चीज़ों को अपन को ले जाना है अपन को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं अपन को इसके परिणाम बुरे दिखते हैं। लेकिन भैयारों, उसी की जगह अगर अपन जो भी अपन तैयारी कर रहे हैं या कोई उत्पाद बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें, सही तरीके से प्रशिक्षण लें और उसकी जो मांग है बाज़ारों में कहाँ किस प्रकार है, साथ ही गुणवत्ता को हमें कैसे बनाए रखना है, तो हम ये सब जानकारी लेकर अगर काम शुरू करते हैं तो हमें बेहतर जो है लाभ मिलता है। और धीरे धीरे जब हम काम काज शुरू करते हैं तो कई बार कहते हैं ना कि गलतियों से ही हम नई सीख लेते हैं, तो जब हम गलतियां होती हैं हमसे या फिर हमें कमी महसूस होती है तो उसमें हम धीरे धीरे सुधार करें और आगे बढ़ते जाएं, तभी हम जो है कोई भी काम काज बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन भैया, जब हम कोई काम काज शुरू करते हैं तो कई बार आर्थिक रूप से भी कई परेशानियां आ जाती हैं, जिसके कारण हम सभी अपने जो है कदम पीछे को बढ़ाने लगते हैं, सोचते हैं कि तना अपन पैसा रुपये इकट्ठा कर लें और बाय के बाद जो है अपना काम काज शुरू करें। तो अगर अपन छोटे काम काज शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी शासन के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके माध्यम से हमें ऋण सुविधा भी मिल जाती है, जिससे हम अपना काम काज शुरू भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके माध्यम से जो है अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले लोग हैं या फिर ऐसा जो अपन ने पहले से ही व्यवसाय शुरू कर रखा है और हम चाह रहे हैं कि हम अपने व्यवसाय को थोड़ा और बढ़ाएं, तो इसके लिए हमें आर्थिक सहायता ऋण के माध्यम से मिल जाती है। साथ ही हम अगर अपना काम काज अच्छे बेहतर तरीके से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी होते जाते हैं। और आज के समय में भैया देख रहे हैं कि डिजिटल जो लेन देन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम सभी को तकनीकी तौर पर भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और भैया, इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भैया बहन समय पर ऋण चुकाते हैं तो उनको अगली बार अगर आवश्यकता पड़ती है और अधिक राशि की ज़रूरत होती है तो ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसके माध्यम से जो है अपने भैया बहन अपने नया काम भी शुरू कर सकते हैं, और अगर उन्होंने पहले से काम शुरू कर रखा है तो उसको बेहतर तरीके से व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है दतिया से। फरमाइश भेजने वाले भैया बहन हैं भूराज सिंह, मधु कुशवाहा, जानकी देवी, मोतीबाई, राजकुंवर और सीमा देवी। इन्होंने फरमाइश करी है कि हमें तेज सिंह कुशवाहा के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ भैया बहनों, सुनते हैं लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को

तो भैया अपन को तो नंबर वन बन के रहने हैं, चाहे अपने इस ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करें या फिर अपन की घर गृहस्थी के बारे में, हर जगह अपन को सबसे पहले सोच के आगे बढ़ने हैं। अब देखो अपने घर में अपन तो समझ रहे हैं कि जो ऊर्जा के साधन हैं उनको अपन को बचाने हैं, लेकिन जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी है जिसके लिए अपन इन साधनों को बचा रहे हैं, उनको भी तो समझावे की जिम्मेदारी अपनी ही है। तो अपन अपने मोड़ा मोड़ियों को भी ये बताएं कि जो भी ऊर्जा के साधन हैं उनको अपन को बचत करके चलने हैं। वे भी आप और उनको ही देख के जो है घर की लाइट पंखा ना उपयोग होने पे बंद कर दे हैं, तो अपन को भी अच्छा लगा था कि हमारे जो मोड़ा मोड़ी हैं वे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और पता ना चले कि जा छोटी छोटी बातें कब उनकी आदत बन जाए। और भैया जब आदत एक बार अपना लेते हैं तो वह पूरे जीवन भर जो बनी रहते हैं। और भैया अपन को एक आदत सोई बनवाने है कि घर से जब भी निकलें तो एक कपड़े को थैला या फिर जो है ऐसो सामान रखवे की चीज़ लेके चलें कि कम से कम जो है अपन को पॉलीथीन की उपयोग करवे की ज़रूरत पड़े। और भैया धीरे धीरे करके कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके पॉलीथीन का उपयोग कम करें, तभी जो है अपन अपने पर्यावरण को साफ सुंदर भी बना सकते हैं और जो अपने जो पशु हैं उनके मुंह में भी उनको जाने से रोक सकते हैं। घर के आसपास भी कई बार देखा था ना कि पॉलीथीन को जो है ढेर लग जाओ है, बाय में गंदो कचरा इकट्ठा हो जाओ है, और तो और बारिश के समय में नालियों में जब ये पॉलीथीन फंस जाओ है तो बेबी जो है रुक जाती हैं और चारों तरफ जो है गंदगी फैलने लगते हैं।

तो भैया जी पॉलीथीन जो है सभी के लाने नुकसानदायक है, तो अपन को यही प्रयास करने हैं कि जहाँ तक हो सके इनको उपयोग कम से कम करें। और अब सुनत है समूह स्वर में वर्षा गीत।

भैया, जब बारिश को मौसम आउट है तो जो है कोयल की कू, मोर की आवाज़, नाचती हुई मोर देख के सभी को मन करत है कि जे ठंडी ठंडी हवा में बैठें और थोड़ो सुस्ताए लें। साथ ही बारिश में जो है कई बार जो अपन देखते हैं कि जो मौसम होता है हमें संदेश देता है कि हम आगे बढ़ें और जीवन में बढ़ते ही चले जाएं, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास जो है खुशियों के साथ साथ नई दिशा दें, नए नए पौधे लगाएं और पौधों को सहेजें भी। और यही मौसम होता है जब हम अधिक मात्रा में पौधे लगा सकते हैं। तो भैया, हम यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। और अब हो रही है चलबे की बेरा, सभी किसान भैयरों को स्वाति बहन की राम राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लेकर कार्यक्रम गीत मालिका हाजिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त सविता। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। और अभिवादन के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो आज का मौसम
1: हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न

पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आएं और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे।
हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की

कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन

0: लीक हुए और उससे बच्चों का विश्वास इन परीक्षाओं से लगभग उठने लगा था, इसलिए यह विधेयक संशोधन आया है और विशेष तौर पर यह सार्वजनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाने का उद्देश्य रखता है
1: जी।
0: और परीक्षा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने आसपास तो युवा को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनकी भी गलती नहीं है अगर वो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि एक तो वो जो आप परीक्षा पास करते हैं अपनी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कहीं प्रवेश परीक्षा है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में हो
1: जी।
0: इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वसनीयता लाना, ताकि यह पीढ़ी उन पर विश्वास कर सके, ताकि प्रत्येक प्रतियोगी और अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके, यह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है
1: जी।
0: साथ ही यह रोक लगाने का भी काम करना चाहता है, नकल पर रोक, प्रश्न पत्र के लीक होने पर रोक, क्योंकि वो बड़ी गंभीर चुनौतियां बन गई हैं इस समय और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, मतलब मुझे तो बहुत ही कड़ी लग रही थी ये कार्रवाई जब मैंने इन प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि बेईमानी करते समय थोड़ा डरे व्यक्ति
1: जी
0: कि मैं जितना कमाऊं इसमें से उससे अधिक मेरा दंड में लग जाएगा, यह शायद एक भय उनके मन में ये विधेयक लाना चाहता है। और फिर एक इम्पर्सोनेशन बहुत बढ़ने लगा है, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है आसानी से चीजें प्राप्त भी करना चाहती है, तो मैं नहीं मेरी जगह ये परीक्षा दे ले, विशेष तौर पर दोज हु कैन अफोर्ड इट, उस पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात है और दोनों को सजा देने की भी बात। फिर अब मात्र ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, एक प्रकार से ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो संगठित शिक्षा कदाचार भी बड़ी समस्या है और बड़ा अपराध भी हो गया है। तो यदि कोई गिरोह या संगठित समूह प्रश्न पत्र लीक कराए, नकल में या परीक्षा में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां आरंभ करे या उनमें शामिल हो जाए, तो उसके विरुद्ध यह विधेयक संगठित कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की बात करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसका उद्देश्य ये भी है, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा, मेरिट पर आधारित चयन को प्रोत्साहन और परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही या उत्तरदायित्व सुरक्षित करना भी इस विधेयक का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पब्लिक एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उसमें पारदर्शिता लाना, उसमें जिस तरह का चैलेंजेस हमने हालिया दिनों में देखे हैं वो फिर ना उत्पन्न हो और उत्पन्न हो तो उनका तुरंत निवारण हो, उस संदर्भ में जिस तरह से आपने एक तो आपने जिक्र किया कि जो जेल टर्म्स हैं या जो जुर्माना है उनको काफी हद तक बढ़ाया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशंस हों, हर एक कैटेगरी में उनको बढ़ाया गया है ताकि एक डर हो ऐसा कुछ भी ऑफेंस करने से पहले, जो हमारे सारे लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। और दूसरा, जो जिस तरह से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको त्वरित करने की जो बात की गई है, उसको एफिशिएंट बनाने की बात की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है और उसमें डे टू डे बेसिस पर, ये नहीं कि दो या तीन हफ्ते बाद की तारीख होगी, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल्स, और वो 3 महीने में उन ट्रायल्स को पूरा करना, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखती हैं?
0: देखिए, बिल जो है ये कहता है कि जो कोर्ट्स होंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे, विद डे टू डे हियरिंग, ट्रायल्स टारगेटेड टू कंक्लूड, 3 महीने के अंदर वो समाप्त हो जाएं, चार्जशीट होने के, और एक सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स की भी बात करता है, ताकि हाई स्टेक्स पेपर्स लीक जो होते हैं या इंटर स्टेट और क्रॉस स्टेट पेपर लीक जो होते हैं, अंतर्राज्यीय होंगे, उनको ये देख सके और उन माल प्रैक्टिसेस को देख सके, और साथ ही स्पेशलाइज प्रोसिक्यूटर्स की भी बात करता है, हु आर डेडिकेटेड टू एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस केसेस, और एक और बात भी है, एक नया अपील मैकेनिज्म की भी ये बात करता है कि किसी भी ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके डिवीजन बेंच और हाई कोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में विद इन 3 months ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप ये प्रायः ये माना जाता था जो सिविल केसेस होते हैं भारत में
1: जी,
0: उन सिविल केसेस में कोई जल्दबाजी करता ही नहीं है
1: जी,
0: और जब तक आप पुलिस को भी संतुष्ट कर लें तो फिर वो और भी देरी हो जाती है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें यदि संगठित गिरोह हो तो बड़ी आसानी व्यवस्था को भी प्रभावी कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो डिले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें यदि डिले होता है तो नेचुरली बच्चों के तो साल जा रहे हैं ना
1: जी,
0: उनका उनका हर साल उनका हर महीना महत्वपूर्ण है, उस रूप में ये एक बहुत त्वरित न्याय का आश्वासन देने वाला कानून है।

0: विधि है और संशोधन ऐसे ही किए गए हैं ताकि जो पुरानी हमने देखी थी कहीं कहीं ढील है उस विधि में या कानून, उसको दूर किया जाए और बच्चों को और युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा पीढ़ी को नहीं, उनके माता पिता को भी, पूरे समाज को ये विश्वास हो कि पेपर लीक की समस्या या नकल रोकने की समस्या कोई छोटी सी समस्या नहीं है, एक बड़ा अपराध, उसको बड़े अपराध में देखा जाए। यह इस विधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसकी सजा भी बढ़ाई है। देखिए, 3 से 5 पहले वो 5 से 10 साल कर दी है, उससे भी अधिक जो फाइन बढ़ाया है वो तो बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी डिटरेंस के रूप में, निवारण के रूप में, निवारक प्रभाव ये पैदा करे, यह इसका उद्देश्य है और प्रक्रियाओं में देरी भी कम होगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों में भी, यूटीज में भी, अपील मैकेनिज्म भी मजबूत हो और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कानून यदि पास करेंगी तो सच में इसका अर्थ युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए और समाज के बाहर मैं कहूंगी राष्ट्र के लिए वास बन पाएगा।
1: जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जब जुर्माना बढ़ाया जाता है या जो जेल सेंटेंस है उसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो एक डेटरेंट के रूप में काम करता है। एक तरह से आपको जैसे एक डर होता है कि आप ये ऑफेंस ना करें या आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए आपने जैसे अभी बताया पनिशमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए भी है जो मिनिमम सेंटेंस है वो पहले 5 वर्ष था अब 7 वर्ष है, और पहले 1 करोड़ जुर्माना था उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। जी, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी उनको कहा है कि उन्हें आपको 4 साल के बजाय 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने से। ये आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल पर जो है इस तरह के रोकथाम लगाई जाए?
0: जी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का विशाल और विस्तृत परीक्षा व्यवस्था हमारी बन गई है, ये पूरी संस्था बन गई है, तो उसमें जो संस्थाएं परीक्षा करवाती हैं वो नेचुरली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती और उनको बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा CUET में, नीट में, नेट में, सभी में बहुत सारे, और इवन फॉर UPSC फॉर दैट मैटर, तो इन सभी में हमें बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है और उसमें प्रिंटिंग, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी सहायता, परिवहन, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बहुत सी एजेंसियां इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, उनके लालच से, उनकी ग्रीड से कहीं भी इस सेवा में बाधा आ सकती है, इसलिए उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें उत्तरदायी बनाया गया है और उनके लिए भी निवारक प्रभाव कठोर दंड से पैदा करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या, वी वर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स, और अभी तक उनको कोई सोचता भी नहीं था, उनकी भी जिम्मेदारी की गई है। और एक चीज जो अभी तक मैं भी नहीं कह पाई हूँ, तो साइबर अपराध जो इसमें अब शामिल हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो डेटा सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, इंक्रिप्शन, डिजिटल निगरानी, इन जैसे उनकी भी आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि साइबर अपराध मात्र राशि के क्षेत्र में या पैसों के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध जहां जहां हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां ये बढ़ते जा रहे हैं। अब भी हम डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ देना चाहती हूँ कि हमें सरकार ने वादा किया है कि अगली बार से ये कंप्यूटर पर होंगी परीक्षाएं, तो वहां भी हमें डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इनकी विशेष प्रावधान बनाने होंगे, रखनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मशीन अपने आप में तो कुछ नहीं करती, लेकिन मशीन को यूज करने वाले, मशीन का रख रखाव करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं, संस्थाएं ही होती हैं, तो उन संस्थाओं में और उन व्यक्तियों में भी अंततः इस विधि का, इस कानून का डर हो, भय हो। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात, अगर आप थोड़ा और समय दें मुझे, तो इससे भी बड़ी कहना चाहती हूँ, ये तो विधि है, ये दंड है, ये अपराध है और उसको रोकने की व्यवस्था है, परंतु इन सबसे बड़ी नैतिकता है। जब तक वो नैतिकता व्यक्तियों और संस्थाओं में नहीं आएगी, और एक शिक्षाविद होने के कारण मैं भी अपराधी महसूस करती हूँ कई बार स्वयं को, क्योंकि जो पीढ़ी निकाली है, ऑल्दो ये पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है, जो पीढ़ी रहे हैं उसमें नैतिकता और शॉर्टकट चुनने की जो एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, उस इच्छा से मुक्ति, ये जब तक हम बच्चों में नहीं लाएंगे, और माता में बड़े स्वप्न देखने की इच्छा और उन स्वप्नों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की

0: वह भी बच्चों आकांक्षाएं हैं, वो सपने हैं वो, लेकिन उन सपनों से भी कहीं ना कहीं बच्चों पर भार पड़ता है। और फिर ये सब मिलकर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जहां अपराध होते हैं, पेपर लीक, नकल करना आसान लगता है, इम्पर्सोनेश क्राइम नहीं लगता, अनैतिक नहीं लगता, और अंततः कोई भी शॉर्टकट मिल जाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से मिले, चाहे वो प्रभाव के माध्यम से मिले, हर व्यक्ति उस तरफ चलना चाहता है। तो बच्चों को इनसे भी रोका जाए,
1: जी
0: माता पिता भी पर बोझ ना डालें, तो मैं
1: जी
0: समझती हूँ अपराधों से मुक्ति अधिक आसानी से मिल सकती है।
1: आपने बहुत ही एक गंभीर बात कही और बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे जो प्रकरण है उसका। एक और मैं आपका जो ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, आज सुबह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी एमपी से अपील किया था कि जो भी विपक्ष के हों, पक्ष के हों, सब जो डिस्कशन है एग्जाम रिफॉर्म बिल पर उसमें हिस्सा लें, अपनी ओपिनियंस दें, और उनके आधार पर जो है जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। उसमें जो भी अगर हम कुछ और चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे तो उनको भी पूरा तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी सारे सांसदों की भी बनती है कि वो इस पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें विदाउट डिस्ट्रप्शन?
0: जी बिल्कुल बनती है। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस,
1: जी
0: क्योंकि ये बुनियाद जरूरत है और बुनियादी अधिकार भी है,
1: जी
0: और उस बुनियादी अधिकार की सुरक्षा और सब तक उसे पहुंचाना सभी सांसदों का, संपूर्ण सरकार का, हमारी पूरी विधायिका का कर्तव्य है।
1: सुषमा जी, लोकसभा में आज पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और सबको नमस्कार एक बार फिर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए साथी फिल्म का गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुरकर की आवाज में, नौशाद के संगीत निर्देशन में। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

अगला गीत आपकी नजर कर रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, धुन आर डी बर्मन ने बनाई है और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत, जिसे लिखा है नीरज ने, तर्ज एस डी वर्मन की है और आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

0: तेरे मेरे सपने फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 220 2233 पर कॉल करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समाचार संध्या थोड़ी देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के

0: 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई

0: अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53 kilogram category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the houses of parliament witnessed repeat

0: पृथ्वी पर हमले के बाद आज भारत ने यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिस्को को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तिजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ्फुज, जहाज रानी की आज़ादी और बैनुल अक़वामी तिजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तिजारती जहाजों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाजरानों की जिंदगियां खतरों में पड़ जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और इनसे बचना चाहिए। सऊदी अरब ने आज कहा कि उसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से दागे गए ड्रोन मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वजारत दिफा का बयान आज ऐसे वक्त पोस्ट किया गया जब अमरीका और ईरान ने हफ्तों की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इन ड्रोन्स में मशरिकी सऊदी अरब और राजधानी रियाद में पेट्रोलियम मराकज को निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने चीन के अपने दौरे का आगाज आज सीपीसी बैनुल अक़वामी महकमे के नायब वजीर सन हयान के हमराह मीटिंग के साथ किया। उन्होंने लीडर सतह की रहनुमाई, तरजीही मामलात और वसीतर सियासी, अवाम से अवाम, तालीमी और थिंक टैंक तबादलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन के दरमियान नथुला पास के जरिए सरहदी तिजारत अगले महीने की पहली तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये तिजारत कोविड-19 वबा के बाद साल 2020 से मुअत्तल थी। तिजारत दोबारा शुरू होने की तकरीब में तवक्को है कि दोनों मुल्कों के हुकाम शिरकत करेंगे। तवक्को है कि तिजारत के दोबारा शुरू होने से सरहद पार की तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे इंदराज शुदा ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और मुंसलिक कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। ओडिशा शदीद मानसून से दोचार है, क्योंकि बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों से ताजा सैलाब, पानी भर जाने, फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर है। रियासती हुकूमत ने तैयारी और आफात से निमटने के इकदाम को मुस्तहकम करते हुए जिला इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा सैलाब आ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ जिले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुवर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक जिले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुवर्णापुर जिले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वजीर सुरेश पुजारी ने आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए सभी जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट के दौरान 24 घंटे चौकसी बरतने और राहत और बचाव के फौरी इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उड़ीसा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और विदर्भ में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड हुकूमत ने अपने सभी जिलों की इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने चारधाम यात्रियों, सयाहों और रिहायशियों को सफर से पहले मौसम से मुतालिक अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया है। इधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हुई है। फिलहाल आसाम में 37,000 से ज्यादा अफराद अब भी 109 राहत कैंपों में कयाम पजीर हैं। ओडिशा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा की सालाना इख्तितामी रस्म नीलाद्री बीजे आज मनाई जा रही है। ये पवित्र तकरीब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर के गर्भगृह में वाके रत्न सिंहासन पर रस्मी वापसी की अलामत है। पुरी में लाखों अकीदतमंद इस अजीमोशान वापसी के शाहिद बनने के लिए जमा हुए हैं, जो रथ यात्रा तकरीबात का अजीमोशान इख्तिताम है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये रस्म बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर लोगों से मिलजुल कर फातिहाना तौर पर अपनी अबदी पनाहगाह में वापस लौट आए।

0: भगवान जगन्नाथ का देवी लक्ष्मी को मुकद्दस रसगुल्ला पेश करना इस तकरीब का सबसे अहम लम्हा होता है। रसगुल्ला पेश करना खुशनूती और सुलह आश्ती की अलामत है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे खोल देती हैं, जो माफी, हम आहंगी की बहाली और मोहब्बत की फतेह की अलामत है। नीलादरी बीजे के साथ रथ यात्रा का ये मुकद्दस सफर अपनी मजहबी तकमील को पहुँचता है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस अर्जदाश्त पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक कालेधन को जायज बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी की फर्द जुर्म पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। असातेजा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्ती की पुलिस जांच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक्कदा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनक्कदा दौलत मुश्तरका खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जाँच के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बाद ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सो जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जीका, स्कब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331 07 1 7 1 1 7 2 3 7 1 7 1 1 7 और 2 3 3 1 4 4 4 4। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल @YAR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskYAR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा, और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है, और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है, और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
0: जी।
1: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीजेज हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
1: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है, और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता, और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका, सैंड फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है, और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू के,
1: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे, या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
1: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के,
1: संध्या के समय पर, या जो है वो प्रातःकाल,
0: अर्ली मॉर्निंग
1: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट काटने के लिए आते हैं, और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
1: वो, तो इन लोगों में भी, मच्छरों में, मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए, कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर

0: होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है या कप है उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं आई बॉल उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में?
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष?
2: जी ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हो रहे और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोरों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: में। ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी?
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है। पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
0: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाए संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पर डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए या जांच अलग अलग होता है तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है या इससे भी ज्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर थिक एंड थिन स्मेयर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
0: अभी
1: है?
0: एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी,
0: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का।

0: तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत,
0: कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना भी,
0: रगड़ना जरूरी है। उसके पीछे साइंस यह है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं? अगर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ अब, यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: शुरू में हम लोगों ने
1: हम अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय है फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसे छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसके उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सलूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में 4-5 महीने।
3: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें, वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है। और ये और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरी बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं।

0: सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिट्रीट कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
0: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज।
0: तो लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है। जैसे पहले DDT का होता था, आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
2: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, यह इसके प्रमुख लक्षण है।
1: डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
0: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता है राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोठाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मैं मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
0: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और खास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है,
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल।
1: पीयूष जी ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
3: देखिए डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं।

0: सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज की संख्या देखी जाती है,
0: रोज उसकी संख्या देखी जाती है, तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज्यादा जरूरी होता है और इस दौरान हाइड्रेशन को अप्रोप्रिएट होना यह ज्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासिटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
1: उस
0: जैसे कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जाकर के करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप और ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
0: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूंगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूंगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
0: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय
2: जी। कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: विशेषज्ञ को नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर, तहसील जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
2: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
0: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
0: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
3: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे

0: और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो डीपीटी का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूटेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं,
0: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी।
0: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू वन, डेंगू टू, डेंगू थ्री, डेंगू फोर ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू वन और डेंगू थ्री माइल्ड होता है
1: जी।
0: और डेंगू टू और डेंगू फोर ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी।
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए संक्षेप में
2: जी। इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति, हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें। यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं शोले फिल्म का गीत। राहुल देव बर्मन ने इसकी तर्ज बनाई है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को आवाज दी है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अरतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है उपाध्याय नगर देवास से मुरालीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, मिंडकी रोड देवास से राघु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और मोहनीसपुरा से जमील खान ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर शोले फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनने जा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर, ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मिंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, साथ ही साथ मलोट पंजाब पटेल नगर से ये फरमाइश है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजूरिया। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कारवां फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं समाधि फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुड़ौरी और प्रकाशवीर राजपूत, डोंडी लोहारा बलोत से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर समाधि फिल्म का ये गीत आपकी नज़र।

जब तक रहे

अगला गीत आपके रेडियो सेट पर अनामिका फिल्म से है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का है। इस गीत को सुनना चाहा है बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर ने। सपना संगीता रोड इंदौर से ये पत्र हमें मिला है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या का। साथ ही साथ ये फरमाइश हमारे हाथ में है उज्जैन से अंतिमा, दिव्य बाहेती, ताशी बाहेती और रेखा बाहेती की। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है अनामिका फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले बहुत ही खूबसूरत सी गीत की फरमाइश हमें जिन श्रोताओं के खतों के माध्यम से मिली है और जहां से मिली है उनके नाम और जगह के नाम आप तक पहुंचाते हैं। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, नेपाल पेले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा, साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे ने। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत एक बार फिर मजरूह सुल्तानपुरी का और इस बार संगीत है सचिन देव बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर हम दोनों फिल्म से। मोहम्मद रफी के साथ आवाज है आशा भोसले की, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है जयदेव का। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सेक्स्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की। साथ ही ये गीत सुनना चाह है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब, आफ्ताब और मेराज अंसारी की। और एक ये खत और हमारे हाथ में है कोटवा नारायणपुर से, बलिया से ये खत हमें मिला है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा नेवादा गाजीपुर की ये हमारे श्रोता है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस गीत को सुनकर आप भी यही कहेंगे कि इतने खूबसूरत गीत सुनवा कर आप कहाँ जा रहे हैं।

श्रोताओं, एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत गीत संगीत की विशेषता ही यही है कि इसे जितना भी सुने दिल नहीं भरता है। बहरहाल वक्त हो चला है, 10:30 हो चुके हैं। अब अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जरीन शर्मा का सरोद पर बजाया राग जोग।

राग जोग में अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, कलाकार थे जरीन शर्मा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में तदुपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV Omorfi पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Daga of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member special investigation team SIT headed by Inspector General of Police IG for the Lucknow Range, Kiran S, to probe the alleged embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the Temple Trust finances. Union Minister for Development of Northeastern Region Jyotiraditya Scindia today chaired the Ministry of Development of Northeastern Region Parliamentary Consultative Committee meeting in New Delhi to review the progress of flagship

0: Unique Selling Proposition USP Initiative. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championship bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Omolola Didi of Nigeria won the gold with the Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Vindhya Rani Devi, won the bronze medal in the women's 58kg category competition. Vindhya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112 in the clean jerk for a total lift of 199kg. And that is the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।